फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 9वीं तिथि। तदनुसार 1 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की

0: बाद के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 17.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: संसार में सभी सुखी रहने और सुख प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, दुख को स्वयं के जीवन से दूर रखने की इच्छा करते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आजकल तो धन संपत्ति के अर्जन को ही सुख का प्रधान कारक माने जाने लगा प्रतीत होता है, लेकिन सुखी रहना या दुखों से मुक्त रहना कोई कठिन या दुस्तर कार्य नहीं है। उपलब्ध से संतुष्ट रहकर और अनुपलब्ध के लिए परेशान व्याकुल न होकर कोई भी व्यक्ति दुखों से दूर रहकर जीवन यापन कर सकता है। सुख एक भावनात्मक उपलब्धि है जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयास करने पर प्राप्त कर सकता है। दरिद्र और अभावग्रस्त लोग दुखी ही रहें ये अनिवार्य नहीं है। इसी तरह सुविधा और साधन संपन्न लोगों का सुखी होना भी आवश्यक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभावग्रस्त लोग भी सुखपूर्ण जीवन यापन करते हैं, बशर्ते उनमें इच्छा और कामना का संतुलन हो, संतोष हो, निष्काम भाव हो और आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की लालसा का अभाव हो। सुख का स्रोत हमारे हृदय में है। सच्चा सुख त्याग, तपस्या और ज्ञानोन्मुख होने में है। वो बाहर से नहीं, अंतर से मिलता है। व्यक्ति, उसका परिवार और उसके सहचर सुखी हों, इसकी कामना सभी करते हैं। धनार्जन और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन धन संपत्ति सुख और आनंद की आपूर्ति में सहायक हो सकते हैं, उसका पर्याय नहीं। ऐसा होता तो संसार के सारे संपन्न लोग सुखी होते और सारे निर्धन साधनहीन लोग दुखी होते। दुख चित्त की एक वृत्ति है, वो ऐसा देवदूत है जिसके सिर पर कांटों का ताज विराजमान है। क्या हमने गौर किया है कि संसार के बारे में धर्म, अध्यात्म और चिंतन से संबंधित ग्रंथों की रचना और ज्ञान पथ का निर्माण उन लोगों ने किया है जिन्हें दुनिया गरीब और विपन्नों के रूप में जानती है। सुख और दुख तो अनुभूतियां हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति और कामना ही उनके लिए अपने द्वार खोलती है। कामनाएं अनंत होती हैं, उन्हें नियंत्रित कर दृष्टिकोण में रचनात्मक परिवर्तन लाकर सादगी और संतोष की छाह में रहकर अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे पास क्या कुछ ईश्वर प्रदत्त है जो अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप में अन्य लोगों की तुलना में कितने आगे हैं, हम पाएंगे कि ईश्वर की कृपा हम पर कम नहीं है। इस ईश्वर प्रदत्त उपहारों से हम वंचित नहीं हैं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों से अधिक बेहतर स्थिति में हैं। ईश्वर के इस अनुदान को लोकोपकार में अधिकाधिक प्रवृत्त करना हमारा कर्तव्य है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम आज जितने समर्थ हैं, वो सामर्थ्य समाज द्वारा ही प्रदत्त है। समाज की देने की इस परंपरा को विकसित करने में हमें यथासंभव योगदान देना चाहिए। सुख और दुख और उसके कारणों पर विचार करते समय क्या हम ये भी विचार करते हैं कि समाज की एक इकाई के तौर पर उसमें हमारा योगदान क्या है? क्या हम सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यक्तिगत नहीं समष्टिगत है और हमारा आचरण और व्यवहार समष्टिगत और लोक कल्याणकारी होना चाहिए? आमतौर पर देखा और विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि दुख का मूल कारण व्यक्ति की वो इच्छा आकांक्षाएं हैं जो निजी स्वार्थ और हित से प्रेरित होती हैं। उनमें लोक हित और लोक कल्याण की भावना का अभाव होता है। ऐसी आकांक्षाओं को विकृत और स्वार्थ जन्य कहा जा सकता है। सुप्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि प्रसन्नता और कुछ नहीं जीवन जीने की कला का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति स्वयं को व्यवस्थित रख सकता है, दूसरों के साथ सद्व्यवहार बरतने के सिद्धांत जानता है, वो सदा मुस्कुराता पाया जाएगा। सत्य है कि प्रसन्नता आसमान से नहीं टपकती, वो भले इंसान के अंतराल में उदित होती है। सादा जीवन जिए, प्रगति के लिए परिश्रमरत रहें, व्यस्त रहें लेकिन आवेश अशांति से दूर रहें, संकीर्ण नहीं उदार बने, जीवन से प्रेम करें ताकि लौटकर वो प्रेम तुम्हें प्रफुल्लता से आच्छादित कर दे।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम संपन्न होता है, हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए लता मंगेशकर द्वारा गाए इस भजन को।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले आपने सुना कुमार गंधर्व और वसुंधरा कोमकली को। अगला भजन सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, जिसमें आज चर्चा का विषय है पशुओं में टीकाकरण का महत्व।
1: जय जोहार, राम राम। तो हमन आज चर्चा करबो कि पशुओं में टीकाकरण काबर आवश्यक है। तो टीकाकरण ला आप मन ला जानना है कि टीका जो पशु मन के लगते वह इंजेक्शन के रूप में लगते, तो कब कब लगते, कौन कौन से टीकाकरण लगते और काबर लगते, एला हमन जानना चाहबो।

0: कि टीकाकरण हर पशु मन बर काबर आवश्यक है। पशु मन ल जो बीमारी होते बहुत सारा बीमारी बर बचाव बर हमन टीकाकरण करथन, जब विशेष करके जैसे कि गलघोंटू है, एक टंगिया बीमारी है, खुरहा चपका है, आजकल ब्रुसेलोसिस एक बीमारी होते गर्भ संक्रामक गर्भपात के, ओकर भी टीकाकरण है, और ये एंथ्रेक्स बीमारी है ओकर टीकाकरण है, और बकरियों में भी माने टीकाकरण करथन हमन पीपीआर के, इंट्रोटॉक्सिमिया के, मुर्गी मन में भी टीकाकरण किया जाते। तो टीकाकरण काबर आवश्यक है? टीकाकरण हर एकर बर आवश्यक है कि ओमे जोन बीमारी होते ओकर जीवाणु के ही कुछ अंश ला ओला एंटीजन जो कथन ओला शरीर में पहुंचाया जाते। ओकर शरीर में पहुंचाथन तो ओहर का करते, शरीर में जाके ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करते। रोग प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी जला कथन हमन वो शरीर में बनते, और जो बीमारी होते ओकर बचाव बर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना शरीर में बनाते। तो वो जब बीमारी के संक्रमण हो ही, चाहे वह जीवाणु हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे विषाणु हो, ओकर जो ना बचाव के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाते, तो वो बीमारी है शरीर में नी होए और ओकर बर बचाव पशु ल होते। जैसे बहुत सारा संक्रामक जो बीमारी है वह बहुत ही घातक होते, पशु के उपचार समय पर नहीं हो जाए ओकर मृत्यु हो जाते। तो पशु के मृत्यु हो ले हमारे किसान भाई मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ते। आज के समय में बहुत ही गाय जो है पशु है बहुत महंगा है, तो ओकर से बहुत नुकसान उठाना पड़ते अगर उपचार भी नहीं हो पाए। तो एकर बर टीकाकरण कराना हमला आवश्यक है कि वो जो बीमारी होते ओकर से बचाव के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार करे बर। तो कौन कौन सा टीकाकरण कब कब लगवाना है एकर जो है ना हम बताना चाहबो कि मानसून के पूर्व अभी जो समय है या मानसून के समय में जून में गलघोंटू और एकटंगिया के टीकाकरण, और ये जो बकरी प्रजाति में इंट्रोटॉक्सिमिया होते ओका टीकाकरण करवाना होते। बरसात के बाद जैसे हमन के अभियान चलते बीच बीच में हमारे विभाग के द्वारा और टीकाकरण कराए जाते, तो ये खुरहा चपका जो बीमारी होते ये सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते। तो सितंबर अक्टूबर में खुरहा चपका के टीकाकरण होता है। ओकर पश्चात जो है ये आजकल जो टीका है ब्रुसेला के टीका विशेषकर संक्रामक गर्भपात होते ओला 4 से 8 महीना के बछिया मन लगवाना है। तो ओला कभी भी हमन ओला लगवा सकत हन, ओकर कोई ऐसा नहीं है कि इस समय में ही लगाना है। 4 से 8 महीना, 8 महीना तक के बछिया हुई ओला कभी भी ब्रुसेला के टीकाकरण हमन लगवा सकत हन। और बकरी प्रजाति के जहाँ टीकाकरण के हमन बात करते हैं, तो बकरी मन में भी बहुत ही आवश्यक है टीकाकरण कराना, विशेषकर पीपीआर बीमारी होते, सर्दी खांसी होते और पतला दस्त होते और बकरी मन की मृत्यु हो जाते। तो ऐसे मैंने पीपीआर बीमारी से बचाए पर पीपीआर के टीकाकरण बरसात के पश्चात ये जो होते सितंबर से अक्टूबर महीना में पीपीआर के या जनवरी से फरवरी के बीच में जो है ना एकर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और मुर्गियों में भी बहुत सारा जो टीकाकरण होते ओमन में भी बहुत ही मुर्गी मन में अमन कथन कि ओकर उपचार से बचाव ही बेहतर है। काबर की मुर्गी मन में उपचार के हमला मौका नहीं मिले, जब बीमारी होते तो कब मृत्यु हो जाते, पूरा झुंड के झुंड में मृत्यु हो जाते, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ना हमारे किसान भाई मतलब झेलना पड़ते। तो एकर टीकाकरण जो है ना समय समय पे वो तो 1 से 7 दिन में रानी खेत के, फिर 3रा से 4था सप्ताह में रानी खेत रेगुलर के, और जब फाउल पाक से जो होता 7वां से 8वां सप्ताह में ये टीकाकरण जो है ना आप मतलब करवाना होते, जगह से बचाव होते और जो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होते ओकर से बचे जा सकते। तो ये टीकाकरण जो है ना समय समय पे आप मतलब कराना है, जगह से बहुत जो नुकसान होते वो बीमारी से हम बचाव कर सकत हन और हमन ओकर पशु मतलब बचा के हमन लाभ प्राप्त कर सकत हन।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था पशुओं में टीकाकरण का महत्व। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: थोड़ी देर में 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। देश गानों का 6:50 पर संस्कृत समाचार, 6:55 पर 7:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। 7:35 पर होगा झरोखा कार्यक्रम, जिसमें चर्चा का विषय हुआ बुजुर्गों का सम्मान, समाज का स्वाभिमान, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 7:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर। समाचार प्रभा सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर एवं 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। शाम गजल कार्यक्रम का वक्त होगा 5:10 पर। घर द्वार कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर, जिसमें आज के गोट का विषय होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा होगी वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। साथी योजना में आप सुनेंगे पीएम मुद्रा योजना। साथी क्रम होगा माटी के गीत। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 7:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण। आप पुनः कार्यक्रम संबंधी जानकारी 7:55 पर एवं 10 बजे प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 151। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर

झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी वाणी जयराम। और इसके साथ रामचरितमानस गान संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश गान। गीतकार हैं कैलाश चंद्र मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान, और इसी के साथ देशगान समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: अनेना कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं पञ्चसप्तत्युत्तर षट्शत रूप्यकाणां, सर्षपस्य त्रयोदशोत्तर चतुःशतं, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मन्त्रिमण्डलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेष्वपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापानदेशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंक ही पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8 पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
3: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
0: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट बार्ली ग्रास

0: लेंटिल्स, रेप सीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट में के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन होती है बारी कार्यक्रम एक ही फिल्म से की, जिसमें हमारी आज की फिल्म है अनाड़ी। श्रोता साथियों, ये फिल्म रिलीज हुई थी सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले 1993 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था कि मुरली मोहन राव ने और इस फिल्म के गीत लिखे समीर ने, संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दग्गुबती वेंकटेश, करिश्मा कपूर, राखी गुलजार, सुरेश ओबेरॉय, जॉनी लीवर, लक्ष्मीकांत बेडे और बीना बनर्जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनाते हैं आज फिल्म अनाड़ी के कुछ चुनिंदा गीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गीत ये सुनिए, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी।

0: क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक है फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है अनाड़ी। संदेश से पहले आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम को। अगला गीत सुनिए उदित नारायण के स्वर में।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे थे अन्हाड़ी फिल्म के चुनिंदा गीत, और इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरूखा।

नमस्कार सुप्रभात श्रोता मित्रों, कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी रेडियो मित्र डिनेश्वरी यादव। मित्रों, घर की चौखट पर ठहरी हुई एक उम्र होती है जिसकी झुर्रियों में अनुभव की कहानी और आंखों में बीते कल की निशानी होती है। ये वही हाथ है जिन्होंने कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और उनका साथ पाकर ही हम हर परेशानी में डटकर खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। जिस प्यार और सहारे की जरूरत हमें बचपन में थी, वही प्यार और साथ हमारे बुजुर्गों की आज की जरूरत है। पर कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते, उनकी खुशियों और भावनाओं को उनके साथ कई बार जानबूझकर या अनजाने में गलत व्यवहार परिवार के लोगों द्वारा किया जाता है। और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमारे समाज में वृद्धाश्रम बुजुर्गों के घर बनते जा रहे हैं और आखिरी समय में वे अकेलेपन के साथ दुनिया से विदा हो जाते हैं। मित्रों, बेशक बुजुर्ग कुछ काम नहीं कर पाते, पर उन्हें बोझ समझकर उनसे दुर्व्यवहार करना सही नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें काबिल बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। और अगर आज हम जो कुछ भी हैं तो हम उनकी ही वजह से हैं। इस वक्त उन्हें प्यार, सम्मान और हमारे साथ की जरूरत है। आज 1 अक्टूबर है और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, उनकी देखभाल, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली चुनौतियों और उनकी जरूरतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक सीख कि परिवार के बुजुर्गों के लिए चंद पल जरूर निकालें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनसे दुर्व्यवहार ना करें, उनकी बातों से चिढ़े नहीं, प्यार से उनसे पेश आए, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उनकी समय समय पर स्वास्थ्य जाँच कराएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि वे हमारे लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि हमारी अमूल्य धरोहर है। जब हमारे बड़े हमसे खुश रहेंगे तभी घर में खुशी आएंगी और यही हमारे संस्कारों का परिचायक है, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान ही समाज का स्वाभिमान है। श्रोताओं, अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया की ओर और सुनते हैं ये गीत।

अब झरोखा से अपनी रेडियो मित्र डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम बाजे मांदर में आज आप सुनेंगे रतनदास मानिकपुरी और सावित्री गंधर्व द्वारा गाए लोकगीतों को।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
3: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

लोक संगीत के कार्यक्रम बाजे मांदर में आज आपने सुना रतनदास मानिकपुरी और सावित्री गंधर्व को, और इसके साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुने कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर सुनेंगे आप मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

शाम 5 बजे सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमर गोठ, प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। 5:10 पर होगा कार्यक्रम शामे गजल। घर द्वार कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर, जिसमें आज ये गोठ का विषय होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा होगी वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। योजना में आप सुनेंगे पीएम मुद्रा योजना, साथ ही होगा क्रम माटी के गीत। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर, ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। किसानवाणी प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 7:30 पर।

बजकर 30 मिनट पर, रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश हिंदी में समाचार, रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये थी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। पुनः सुबह 10 बजे कार्यक्रम विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
1: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
2: आयुष्मान भारत पीएम जय,
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
5: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
6: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
7: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
6: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा तटीय आंध्र प्रदेश ओडिशा अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: हर खबर से जुड़े रहिए जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
11: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
10: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
12: Rabi season ki MSP badhane se
13: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
12: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP approve hue.
10: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. The ministry underlined that it is expected to encourage systematic exploration, attract investment and promote the adoption of advanced technologies for offshore mineral exploration and development. The Supreme Court has ruled out a complete ban on firecrackers ahead of Diwali and favoured a balanced approach. A bench of Justices M.M. Sundaresh and P.B. Varale indicated it will permit the use of certain firecrackers during Diwali but impose specified time limits, ruling out both a blanket ban and unrestricted bursting of crackers. The apex court stressed the need to strike a balance between religious sentiments and the harmful effects of air pollution. It said a complete ban could hurt the sentiments of people celebrating Diwali, while allowing firecrackers throughout the day will adversely affect the environment and vulnerable groups, including children, the elderly and the sick. The apex court was hearing a long-pending matter concerning restrictions on firecrackers in Delhi NCR and other northern states during the period of severe air pollution. This is Akashwani giving you the news.
4: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
10: Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv in Israel. The Omani co-pilot stabbed the captain and caused the aircraft to plunge roughly 17,400 feet in under 2 minutes yesterday. However, passengers and crew members, including off-duty personnel, breached the cockpit, subdued the attacker and helped stabilise the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in the northwestern Saudi Arabia. More in this report.
9: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz described the event as a severe security incident and a suspected terrorist attack. Israeli Prime Minister described Captain Smith Machar, an Indian national, a true hero who saved the lives of 174 people on board the Israel-bound flight. Mr. Netanyahu said Captain Smith Machar displayed extraordinary bravery by fighting back and preventing a mid-air disaster. Prime Minister Narendra Modi has said that in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Machar showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for a speedy recovery, renewed strength and good health. US President Donald Trump also hailed Captain Smith as a hero for fighting off a knife attack from the Omani co-pilot, opening the cockpit door and calling for help to foil a bid to crash the aircraft. India's embassy in Riyadh and its consulate general in Jeddah said they are closely monitoring the health of Captain Smith Machar. In a statement, Indian embassy said Captain Machar is currently admitted to a hospital in Tabuk and receiving medical treatment. The embassy said initial reports indicate that his condition is stable. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi has said that in the face of the gravest danger and despite being seriously injured, Captain Smith Machar showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. In a social media post, Mr. Modi said his valor helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. He said Captain Smith Machar is a hero and India is proud of him. The Prime Minister prayed for his speedy recovery, renewed strength and good health. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the 3-match series at Barsapada Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their highest ever ODI total of 405 for 7. India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. Captain Shubman Gill led the charge with a sensational unbeaten 233 of 133 balls, while Rohit Sharma scored 101 of 75 balls to register his 35th ODI century. India will begin Day 12 of the Asian Games 2026 with hopes of adding more medals to their tally today, with several key events lined up across disciplines. The spotlight will be on the men's hockey semi-final, where India will take on arch-rivals Pakistan in a highly anticipated clash. The Indian team will be aiming for a win to secure its place in the final. Meanwhile, the Indian women's hockey team has already secured its place in the gold medal match against China. In cricket, defending champions India will face Sri Lanka in the men's semi-final. India will look to secure a victory and move one step closer to defending their Asian Games title. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in this special series, we bring you an instance of how PM Modi led government's vision of modern infrastructure and stronger connectivity is being translated into action through the remarkable Chenab and Anji Khad railway bridges in Jammu and Kashmir.
5: Udhampur, श्रीनगर बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था चुनौतीपूर्ण था लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है
6: After inaugurating the Chenab and Anji Khad bridges on June 6 last year, Prime Minister Narendra Modi described the railway bridges as symbols of India's engineering capabilities and milestones in strengthening connectivity in Jammu and Kashmir. The two bridges are vital components of Udhampur, Srinagar, Baramulla rail link and were built across challenging mountainous terrain. The Chenab rail bridge, standing 359 meters above the Chenab River, is the world's highest railway arc bridge. The Anji bridge is India's first cable-stayed railway bridge supported by 96 cables. Tajamul Ahmed, an orchardist from Kulgam, believes that the rail connectivity made possible by the construction of these bridges has made it easy for the apple growers to transport their produce to the other parts of the country swiftly.
7: Previously, we used to face enormous problems in transporting our fruits and other agricultural produce to the different parts of the country. But ever since the operationalization of Katra Banihal Srinagar Rail Link, it has become very easy for us to transport the fruits to the different states and markets of the country.
6: Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
10: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
14: Thank you, Pramod. Israel-bound plane drops 16,000 feet in a minute as pilot stabs colleague, headlines The Hindu. While the Indian Express headlines, mid-air scare, flight plunges as co-pilot stabs pilot. Israel says terror bid to bring down plane. And the Tribune headlines, Indian captain fights for co-pilot trying to crash Israel-bound plane. The paper adds that he saved 100

0: सुघर सुघर लोक संगीत ले सजे है फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी। आज के ये कार्यक्रम में आप मन के फोन ला झोके बर और आप मन के मन पसंद के गीत ला सुनाए बर उपस्थित हवा आप मन के संगवारी राम विलास पटेल। झोका मोड़ डहा ले राम राम जय जुहार। तो संगी हो आज के ये कार्यक्रम ला शुरू करी। हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी, नमस्ते भैया।
0: नमस्ते नमस्ते, कहाँ ले बोला था?
1: मैं तो रायपुर ले बोला था भैया।
0: रायपुर ले कौन बोला था जी?
1: वैशाली पटेल।
0: वैशाली?
1: हाँ वैशाली पटेल।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ करते जी आप मन?
1: मोर दुकान है भैया, रायपुर में दुकान खोले हाँ सिलाई के।
0: अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। आप मन आत्मनिर्भर बना था। और कार्यक्रम ला कैसे सुनता आकाशवाणी रायगढ़ के? जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया लागिस कि आप मन हमर कार्यक्रम से जुड़ा और पहली बार जुड़ा। एक बार आप मन बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है।
1: आप मन भैया कि आप मन हमर कॉल उठा ले, मोला इतना खुशी मिले थे बहुत ज्यादा।
0: जी जी जी जी, हमन महसूस कर सकत हन आप मन के गोड़ बात से छलका थे माया हर।
1: हाँ।
0: और बताओ आज के कार्यक्रम में का गीत संगी जहोरिया मन सुना?
1: हाँ लक्ष्मण सूर्या के गाना एक बार सुनना चाहता हूँ भैया, पर आवाज ला रेडियो में सुन के इतना खुशी मिलते नहीं भैया, मैं बता नहीं सकता।
0: जी जी जी, चला फिर सुनाओ और आप मन के पसंद के गीत ला सुनाओ और आप मन के गोड बात ला सुनाओ रेडियो सेट में। फोन कर रायपुर डाले हमर डहार, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप मन ला भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो संगवारी।
2: हेलो संगवारी, राम राम भैया जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार, नाम बतावा जी।
2: मेरा नाम है भैया सुरेंद्र सिंह भारद्वाज।
0: अच्छा अच्छा, भारद्वाज जी कहाँ से बोला था?
2: मैं बोला था भारतीय नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी, आप मन के कर पहले भी फोन आ रही से हमारे कार्यक्रम में।
2: हाँ ये लगा चुके हैं दो तीन बार।
0: हाँ, हाँ। भारद्वाज जी क्या करते आप मन?
2: मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड वन पर पदस्थ हूँ रायगढ़ ऑफिस।
0: जी जी, और आप मन के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है और आप मन हमारे नियमित श्रोता हवा। कार्यक्रम कैसे लागते जी?
2: बहुत अच्छा लगते भैया, बहुत बढ़िया।
0: जी जी, अच्छा लगे आप मन हमारे कार्यक्रम से जुड़ा और
2: हाँ, हाँ।
0: गीत संगीत के कार्यक्रम रही थे हमारे लोक गीत के इमा, तो का गीत सुनिए आप मन बतावा।
2: आज बस सुनना चाहता हूँ भैया लक्ष्मण मस्तूरिया।
0: अच्छा चला फिर मिलजुल के सुनाओ जी ये सुघर गीत ला। फोन करे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप मतलब ये धन्यवाद भैया।

0: हेलो संगवारी, कार्यक्रम में स्वागत है जी। कौन बोला था, कहाँ ने बोला था?
1: पटेल
0: हाँ, पटेल जी बोला था। आप कौन बोला था?
1: जी,
0: समयलाल धीवर जी। कैसे हवा?
1: संगवारी
0: अच्छा, घाम कर रहे थे। फसल कैसे है दारी?
1: फसल तो अच्छा है संगी।
0: अच्छा, और खेती किसानी के काम के संग में रेडियो के आनंद लेवा था?
1: हम तो दिन भर मोबाइल धर के, फिल्म धर के, रोटीन धर के हम गाना सुनते रहते हैं संगी। संगवारी
0: जी, आप मन के पत्र आवत रहे थे, ईमेल आवत रहे थे हमार डहर, और आप मन ला धन्यवाद कहना चाहबो कि हमार कार्यक्रम में आप मन ऐसे जुड़े रहो कबो, और जुड़ते रहो और दूसर संगी संगवारी मतलब भी जोड़त रहो।
1: संगवारी में है दो चार आदमी ना, दो चार दो एक महीना भेजी तन भेज के समर्थन
0: जी
1: से
0: जी
1: श्रोता हूँ धन से।
0: जी जी तो आज का गीत सुनिए कार्यक्रम में संगवारी।
1: अब तो लिखने गाना मन अभी के पसंद सुनाते संगवारी।
0: चला फिर हमार पसंद के सुनाओ ये सुघर गीत ला। फोन करा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: कार्यक्रम है हेलो संगवारी।
1: मिला
0: जय राम जी, जय राम जी। स्वागत है कार्यक्रम मा जी।
1: मैं राजघाट के सर से मोतीलाल साहू भैया।
0: मोतीलाल साहू जी, हाल चाल कैसे है?
1: हाल चाल तो बढ़िया भैया, ये 4 दिन में पहाड़ में गिर रहे हैं।
0: अच्छा, कहाँ कौन से नदी के बाढ़ आप मन के डहर आते?
1: हमारे नजदीक में भैया हमारे गांव में हाफ नदी है, लेकिन सिद्धांत नदी सीधी बाढ़ रही तो बहुत ज्यादा उलट आ रही है। अब
0: जी जी
1: नजदीक
0: जी
1: में बाढ़ रही थे।
0: अच्छा, फसल वसल कैसे
1: धान
0: है?
1: तो भैया कम से निकाल ठीक है, रहती है धान की फसल के नुकसान है।
0: धान के फसल नुकसान हो है?
1: हाँ
0: चला, ये तो प्राकृतिक आपदा हवे, एमा हमार तोहर कछु नहीं लहे और ऊपर वाला के खेल हवे।
1: भैया पूरे वाले की देन है।
0: हाँ, और कार्यक्रम के माध्यम से आप मन आनंद लेता कार्यक्रम के,
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: तो कार्यक्रम में आज के गीतकार ही संगीतकार ही आप मन के पसंद हमार श्रोता संगवारी
1: मतलब
0: मला।
1: भैया जय सिंह राज अंबिका साहू के घर में है।
0: का कार्यक्रम सुनता आकाशवाणी रायगढ़ के?
1: वैसे भैया परवैसी कार्यक्रम ज्यादा सुनता ना, पर रायपुर ज्यादा अच्छा साथ चलते भैया घर
0: अच्छा
1: में रेडियो में। और ऐसे मोबाइल लेते जो बाहर एकदम रायगढ़ उधर सुनते एकदम भैया किसान वाणी के सुनते।
0: अच्छा, चलो संगी सुनाओ जी हमार पसंद तुम्हार पसंद के सुघर गीत ला। फोन करा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो संभारी, राम राम। जी
0: राम राम, जय जुहार जी। बताओ कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
1: मैं ग्राम भिलौरी बावन लाख जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोला था। आदरणीय
0: सुरित रमेश साहू जी, आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में। हमन आप मन से जानना चाहबो, स्वच्छता ही सेवा अभियान चला थे तो ये में साफ सफाई और स्वच्छता कतका जरूरी हावे हमर बर?
1: स्वच्छता तो ऐसे जरूरी जैसे हमन अपन दैनिक जीवन में उपयोग में ले के जो सामग्री जो लेते हैं ना,
0: हाँ,
1: आई पी के ते प्रकार से स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और बहुत जरूरी है। आदरणीय काबर की बताओ, हम स्वच्छ तो जग स्वच्छ।
0: हाँ
1: यदि हम यदि अपन आप लेके चलबो कि हमारे जगह आसपास के क्षेत्र वातावरण अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा बनाबो तो हमारे जो देश है भारत देश कहा जाए छत्तीसगढ़ कहा जाए जैसे भी देश है तेना साफ सफाई रही। आदरणीय जब हम मन में ठान के करबो तो
0: बिल्कुल सही कहा था सुरित रमेश जी। और आज के कार्यक्रम में का गीत पसंद करा था?
1: अब गीत ऐसे आदरणीय कि अभी पितर पक्ष चले हैं तो पितर पक्ष में का है हमन माता पिता ला निमंत्रण दे के बला था ना उस श्राद्ध के रूप में उकर तर्पण कर था ना तुरई पान लेके उन्हें कहा जाए थोड़े से उड़द दाल और थोड़ा से चावल और डूबी के तर्पण करके बोला स्वागत करके बलाथन बोला माने मृत आत्मा ला चाहे वो दादा हो दादी हो माता पिता ही क्यों ना हो भाई बहन क्यों ना हो या परिवार में अन्य रिश्तेदार ही क्यों ना हो आदरणीय सब हमन बला थन है ना वोकर वो प्रकार से श्राद्ध कर थन तर्पण कर थन माता पिता से संबंधित चतुर्राम साहू जी के गाना रही जैसे बेटा सरवन तुमा के पानी पिया देते ऐसे कुछ है गाना रही आदरणीय।
0: अच्छा
1: आदरणीय एक गुजारिश आपसे से कुछ श्रोता भाई मन के नाम ले लो का कहा
0: बिल्कुल बिल्कुल लेवा
1: जी तो हमारे गणेश धाम परसूले से जितेंद्र दास मानिकपुरी और मोतीन देवी मानिकपुरी जी है साकर सोमनी से नारायण लाल साहू जी है अमर योगेश सारव साहब जी है गंडी से पवन कुमार सेन जी है उत्तम सिंह जंगेल है और हमारे रुआमल है सनीचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन साहब जी है आदरणीय और साथ ही साथ हमारे भिलौरी 52 लाख जिला बेमेतरा से भूषण कुमार साहू जी।
0: चलो फिर सुनो जी, आप जम्मू जन मिलजुल के ये सुघर गीत ला फोन करे एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आदरणीय।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी। बतावा जी, कहाँ ले, कौन और कौन बोला था जी?
1: हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा था। सर, हमारा पहली बार कॉल लगा है इस कार्यक्रम में।
0: जी जी जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, अभिनंदन है कार्यक्रम में। और हमार आकाशवाणी रायगढ़ के का कार्यक्रम सुनता हो आप मन?
1: सर, हमारा का पानी रायगढ़ के फरमाइशी प्रोग्राम भी सुनते हैं, फोनिंग प्रोग्राम भी सुनते हैं। और
0: जी
1: सर, इतनी लाजवाब प्रस्तुति होती है फोनिंग प्रोग्राम की कि सर सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सर।
0: जी जी जी और आप मन के क्षेत्र के बारे में बताओ, का खेती किसानी होती है, आप मन का करता?
1: सर, हम खेती बाड़ी करते हैं। अभी सोयाबीन की फसल लगी है, मकई की फसल है सर, और उड़द बोते हैं, और अपने धान भी लगाई हुई है सर इस समय।
0: जी, और आप मन का करता खेती किसानी?
1: जी सर, हम खेती किसानी करते हैं। और सर, हम तो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, एक
0: जी
1: नंबर प्रोग्राम रहता है फोन इन वाला।
0: जी जी जी जी चला, ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत के, लोक संगीत के कार्यक्रम हेलो संगवारी में आप मन के फोन हर मिले हैं, तो का गीत सुनिया सुनाहा आज?
1: लोकगीत सुनवा दीजिएगा सर, हमको सभी लोकगीत अच्छे लगते हैं सर।
0: जी जी जी जी चला कुशवाहा जी, हमार डहर माया जोर के फोन लगावा, हमार डहर मिलावा, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और सुना भी सुघर लोकगीत ला। हेलो संगवारी। हाँ जी, स्वागत है जी। राम राम, जय जोहार जी। नाम बतावा जी।
1: कमलकांत मरावी लोरमी ग्राम कचेड़ी ले बोला था भैया।
0: कमलकांत मरावी जी के स्वागत है, बहुत बढ़िया। हमार श्रोता आवा आप मन के ईमेल पत्र हमार डहर आवत रहे थे, और बहुत अच्छा लगते कि आप मन नियमित श्रोता हवा हमार केंद्र के।
1: हाँ भैया, हाँ,
0: का करता आप मन संगवारी?
1: मैं तो खेती किसानी कृषि कार्य करता हूँ संगवारी।
0: खेती किसानी में का लगे है फसल?
1: अभी धान लगे संगवारी।
0: अच्छा, और तिवरा बोटराव नाना प्रकार के सब्जी भाजी के फसल नहीं ला?
1: अब ये धान कटाई के बाद, हाँ
0: अच्छा, ओल्हा बतर मालिया, जब एकर खरीफ के कटाई हो जाए तो कहा तो। और बतावा आकाशवाणी रायगढ़ के का कार्यक्रम आप मतलब बढ़िया लागते?
1: मैं तो इसे प्राय समय रखे खेत घूम के आता हूँ, तो मैं उसे जम्मू कार्यक्रम ला सुनत रहा हूँ भैया, सबो बढ़िया लगते मोला।
0: जी, तो आज के कार्यक्रम में का गीत रही पसंद आप मन के?
1: मोला सुनवा देते नकुल के सवाल सवित्री कहार के स्वर में गीत हवा भैया।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: हाँ से ले गोठिया ले
1: सुने गोठिया ले जिंदगी नहीं आवा दोबारा वाले
0: दोबारा।
1: गीत।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया गीत है संगीत, और बहुत बढ़िया गीत और संगीत है ये गीत माँ, तो आवा संगी मिल के सुनी ये सुघर गीत ला। फोन करे एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद संगवारी, धन्यवाद।

संगी हो, आज के ये कार्यक्रम में हमन ला तकनीकी सहयोग मिले रही से भूपत सिंह ध्रुवे के, कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के मितान रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने रवि आनंद। तो इकरे संग सिरावत है आज के हेलो संगवारी कार्यक्रम। तो देवो विदा, राम राम, जय जुहार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी, प्रस्तुत करता थे रवि आनंद, संचालन करता थे रामविलास पटेल, और इसके साथ ही फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, सुनिए विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहाँ पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा, यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया।

इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा था, यदि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो गया होता। 1 अक्टूबर 1979 को राष्ट्र का यह महान सपूत चिर निद्रा में लीन हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक फौजी नहीं बल्कि विवेक और राष्ट्र प्रेम के वो प्रतीक थे जिन्होंने सिखाया कि देशभक्ति के प्रति निष्ठा किसी औपनिवेशिक हुक्म से बड़ी होती है। उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें सादर नमन करता है।

0: हम सुन रहे थे दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज में, जिस गीत को लिखा प्रसून जोशी ने, एआर रहमान ने जिसे संगीतबद्ध किया, हमने जिस फिल्म में इसे लिया गया है वह फिल्म है रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं ये एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। अब चित्रलोक पे वक्त है कि एक कहानी छोटी सी आपके साथ साझा की जाए। कि एक समय की बात है, बहुत धनी और जिज्ञासु राजा थे, तो उनकी एक आदत थी कि वो परीक्षाएं लिया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और वह वहीं एक दूसरे पत्थर के पीछे छिप गए अपने मंत्रियों के साथ में, ये देखने के लिए कि उस विशाल पत्थर के आसपास से गुजरने वाले, निकलने वाले लोग क्या करते हैं। अब वहां से कई लोग निकले तो सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी और दरबारी निकले, उन्होंने पत्थर को तो हटाया नहीं और अगल बगल से निकल गए। और थोड़ी देर के बाद में वहां से निकले कुछ ऐसे लोग जो सामान्य थे, तो उन्होंने बड़ी गुस्सा किया, बड़ा गंदा बोला। उन्होंने कहा, बड़ा खराब राजा है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, इसे भी नहीं हटवा सकता। क्या काम का राजा है, क्या काम के दरबारी हैं, बस हमसे तो कर लिया जाता है, हम कर दिए रहते हैं पर काम कुछ नहीं होता। राजा ने इस बात को भी सुना और उसके बाद में पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। अब थोड़ी देर के बाद में एक किसान वहां से निकलता है। उस किसान के हाथों में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे वह बाजार लेकर जा रहा है बेचने के लिए, लेकिन वह देखता है बीच में एक बड़ा पत्थर है। वह उस पत्थर को हटाने के लिए अपने हाथ की सब्जियां पहले नीचे रखता है और उसके बाद उस पत्थर को हटाने लगता है। पत्थर हटाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बड़ा पत्थर है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन उस पत्थर को धीरे धीरे करके वह लुढ़काकर सड़क के उस ओर रख देता है। और जैसे ही वह पत्थर हटाता है, उस पत्थर के नीचे उसे एक थैला मिलता है और उस थैले को खोलते ही वह पाता है कि उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं और वह खुश हो जाता है। तभी उसे एक चिट्ठी भी मिलती है और उस चिट्ठी को जैसे ही वह पढ़ता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वह चिट्ठी सामान्य चिट्ठी या सामान्य पत्र नहीं था, राजा के द्वारा दिया गया पत्र था और उसमें यह लिखा था कि आपने इस सम्मान को चुना है क्योंकि आपने देश की बाधाओं को हटाने का प्रयास किया है, तो राष्ट्र देश आपके लिए सम्मान रखता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पत्थर हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे शहर में, कभी कभी हमारे देश में मिलते हैं और हम उन्हें हटाने की बजाय उनसे ही लड़ बैठते हैं। विचार कीजिएगा, हमने कितने पत्थर हटाए, इस बात का विचार करना है ताकि राष्ट्र सुरक्षित हो सके। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्का भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया। प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयां और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से एआर रहमान सुखविंदर सिंह की आवाजों में समीर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक का आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहां पर पहुंचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपए वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपए वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपए की है, चाहिए है तो लो नहीं तो जाओ यहां से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया, आइसक्रीम ले रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपए ही देता है, कहता है 35 रुपए आइसक्रीम के और 15 रुपए हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जानें, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए कार्यक्रम चित्रलोक से। नमस्कार।

भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: प्यार के मन।
1: हिंदी और बांग्ला की 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए संगीत सृजन करने वाले सचिन देव बर्मन संगीतकार बनने से पहले कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गाया करते थे। उनकी गायी रचनाओं पर बांग्ला लोक संगीत और भारतीय सुगम शास्त्रीय संगीत का प्रभाव झलकता था। सन 1932 में रिलीज हुआ था सचिन देव बर्मन की गायी रचनाओं का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 को कोमिला में हुआ था। उनके पिता नवद्वीप चंद्र देव बर्मन और मां निरुपमा देवी का संबंध राजघराने से था। सचिन देव बर्मन अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के बाद सचिन देव बर्मन ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। 1925 से 1930 के बीच उन्होंने गायक मन्ना डे के चाचा केसी डे से संगीत की शिक्षा ली और कालांतर में भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से। इसके बाद संगीत जगत के कई और उस्तादों से संगीत सीखा, जिनमें उस्ताद बादल खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब प्रमुख हैं। गायक के रूप में बांग्ला में उन्होंने 131 गीत गाए। म्यूजिक कंपोजर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई थी बांग्ला नाटक सती तीर्थ और जननी से। सन 1937 में उन्हें पहली बार बांग्ला फिल्म राजगीर में संगीत देने का अवसर मिला। सन 1933 में उन्हें यहूदी की लड़की में पहली बार गाने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से उनके गाये गीत को रद्द कर वही गीत पहाड़ी सान्याल से गवाया गया। सन 1944 में सचिन देव बर्मन फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी की सलाह पर मुंबई आ गए। शशधर मुखर्जी ने सचिन देव बर्मन को अशोक कुमार अभिनीत फिल्म शिकारी और फिल्म 8 दिन में संगीत देने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला सन 1947 में आई फिल्म 2 भाई में।

0: सन 1949 में फिल्मिस्तान के बैनर तले सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी उल्लेखनीय फिल्म आई शबनम, जिसके इस गीत ने उन दिनों धूम मचा दी थी।
1: ये दुनिया रूप की चोर, ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू।

0: एक बंगाली धोती ढीली ढाली, रास्ते में मिला एक बंगाली दर्शन का अभिलाषी। वो कहने लगा
1: क्या?
0: वो कहने लगा जल खाओ बे, रसगुल्ला खाओ बे, और कहने लगा हम

बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन देव बर्मन का मुंबई के फिल्म जगत से मोह भंग हो गया था और वो कोलकाता वापस लौट जाना चाहते थे। शुक्र है ऐसा नहीं हो पाया और सचिन देव बर्मन मुंबई में ही रुक गए भविष्य की कालजयी धुनों

देव आनंद अभिनीत नवकेतन की जिन अन्य मशहूर फिल्मों में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया उनके नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट।

0: नहीं।
1: देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म काला बाजार में भी सचिन देव बर्मन ने सुमधुर संगीत दिया। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

फिल्म गाइड, देव आनंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, विजय आनंद के कसे हुए निर्देशन, शैलेंद्र के गीतों और सचिन देव बर्मन के सुरीले कालजयी संगीत के लिए आज भी भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्मों में शामिल है।

भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ भी काम करते हुए सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत सृजन की यादगार मणियों का योगदान दिया। ये फिल्में हैं देवदास, सुजाता और बंदिनी।

में सचिन देव बर्मन ने बरस दर बरस देव आनंद अभिनीत कुछ और फिल्मों के लिए तैयार किया अपना मधुर संगीत। ये फिल्में हैं बंबई का बाबू, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, ज्वेल थीफ,

सन 1969 में आई सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म आराधना। इसी फिल्म से उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का।

0: नहीं छुप जा।
1: मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल रिपोर्टेड गांव में कल 2 अक्टूबर को जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि देशभर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। महानदी के जल बंटवारे और जल प्रबंधन को लेकर एक अहम बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल होंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल रिपोर्टेड गांव में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे गांव जहां पेयजल योजनाओं का काम पूरा हो चुका है और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा हो गया है, वहां योजनाओं को निर्धारित हैंडओवर प्रोटोकॉल के तहत ग्राम पंचायतों और समुदाय को संचालन के लिए सौंपा जाएगा। जल जीवन मिशन के संचालक ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक सत्यापन, प्रमाणीकरण और दस्तावेजीकरण समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं से संबंधित प्रगति, पूर्णता प्रमाण पत्र, जल गुणवत्ता जांच और रखरखाव संबंधी जानकारी जल जीवन मिशन के पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी। बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन आज 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। पंजीयन 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाली प्रतियोगिताओं का विकासखंड स्तर पर आयोजन 1 से 13 नवंबर तक होगा। बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष आयु के बालक बालिकाएं और सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष हिस्सा ले सकेंगे। रायपुर जिले में संचालित गैर आवासीय फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी और एथलेटिक्स अकादमी में प्रवेश के लिए 2 दिवसीय चयन ट्रायल शुरू हुआ। पहले दिन 144 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। खिलाड़ियों के दस्तावेज, चिकित्सकीय और शारीरिक दक्षता परीक्षण किए गए। इनमें 30 मीटर

0: दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल रिपोर्टेड गांव में कल 2 अक्टूबर को जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन आज से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे है, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे 10:10 पर लोक संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11 बजे और पुनः 12 बजे। प्रादेशिक समाचार आप पुनः सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 11:55 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर गोठ। प्रायोजक होंगे CF1 विभाग सरगुजा। 5:10 पर आप सुनेंगे शाम गजल। घर द्वार कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर, जिसमें आज के गोठ का विषय होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा में होगी वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस विषय पर चर्चा होगी। योजना में आप सुनेंगे PM मुद्रा योजना, साथ ही होगा क्रम माटी के गीत। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 8 बजे। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन

0: जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगला दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Bande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jela mein hua. Bande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार, जिसमें आज के गोट का विषय होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा होगी वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस योजना होगी, पीएम मुद्रा योजना, साथ ही क्रम होगा माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम के

पखवाड़े आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रैगड़ केंद्र है। 10:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। संगवारी हो लोक संगीत के कार्यक्रम माँ आप जम्मो श्रोता संगवारी मन के स्वागत थे। कार्यक्रम ला आगू बढ़ा थन और सुन थन ए भजन ला जिला गैन हावे बैतल राम साहू और उकर साथी।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: संगी हो, आज कार्यक्रम लोक संगीत में हमन एक ले बढ़ के एक सुघर सुघर गीत ला लानी हन। और हमार आज के गायक कलाकार हवे बैतल राम साहू और उकर साथी। सुना ए ददरिया गीतला।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

संगवारी हो, आज आप मन सुनत रहा कार्यक्रम लोक संगीत मा बैतलराम साहू और उकर साथी मन के गाए लोकगीत ला और सिरावत है हमर लोक संगीत के ए कार्यक्रम हा। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम संपन्न होता है FM बैंड पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: श्रोता साथियों नमस्कार, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त डिडनेश्वरी। श्रोता साथियों, आपके पसंद के गीत की महफिल सजाने आज हम लेकर आ चुके हैं आज का कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में है आपके पसंदीदा गीत, आपके खत और आपके ईमेल। शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और पहला गीत सुनिए जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, हसरत के बोल है, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं दुर्गा सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास इस वक्त आई है ईमेल के द्वारा, जिसे भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। ये भी सुना चाहते हैं इसी पसंद, इसी गीत की पसंद इन्होंने भेजी है। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ और नईम राजा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनिए, फिल्म 3 देवियां से, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। मजरू के बोल हैं, श्री बर्मन का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राहे, फिरोज आलम, नाज, प्रवीण, अर्श बाबू। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती।
1: सुरीली संदली।
6: कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म गीत गाता चल से, जिसे गाया है जसपाल सिंह ने और साथ ही उनके साथियों ने। गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश, साहू डुमराव, बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम आदिबा, दानिश अंसारी, गुलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यनंद आर्य, परमानंद आर्य, सारेमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, इकबाल मस्तान, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कातल बोर्ड से भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, लेवाई, छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा रानी मानिकपुरी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

अब बारी है एक और खूबसूरत से गीत की, जो है फिल्म बेताब से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर ने। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, आर डी बर्मन का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन। इसी गीत को सुना जाते चक्रबाटा कैंप से रूपचंद सिंहवानी, सपना, गोविंदा, जयंत कृपाल, साधना, शेरू और अंजू मन्नत सिंहवानी। इसी गीत को सुना चाहते सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद, ललन, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट करें, shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। पता एक बार फिर से सुने, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड 9601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत, नमस्कार, और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: सांवरे इस एल्बम से सुन रहे थे भजन आप, जिसे गाया अजित कल्ले ने और मनोहर राय ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में।

0: आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कितने ही रंग इस एल्बम से आप सुन रहे थे बशीर बद्र का ये कलाम चंदन दास की आवाज में।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गजल जिसे लिखा है रिफत सारोश ने और सितम एल्बम से चंदनदास की आवाज में। इसे सुनते हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर

0: शाम 4 बजे विविध भारती पर।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में जान इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, निखिल विनय का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज, जिसकी अपनी ही एक रंग

और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत, फिल्म जाने मन।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आपने सुना। सुजाता फिल्म के इस गीत में आवाज आशा भोसले और साथियों की। आज गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जन्म जयंती है और उन्हीं के मिले जुले गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: प्यार के हमसे कुछ न बोल।
1: 9:11 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर यादों की महफिल। आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है और रात 8 बजे हवा महल में सुनेंगे झलकी अंगारे, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन सत्येंद्र सरत का। और इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके गीतों के जरिए।

0: करगई पागल मोय, करगई पागल मोय, करगई पागल मोय। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल। अरे
1: बात एक रात की। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
4: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। शैलेंद्र ने इसे लिखा। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे बंदिनी फिल्म से। इसे लिखा शैलेंद्र ने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी जन्म जयंती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिस

0: की अपनी ही एक रंगत है और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुषि। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंकर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, तुषार भाटिया का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में रोजाना करते हैं कि एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो आज की इबारत आपको पहले सुना देते हैं। आज की इबारत है, उम्र का क्या है बढ़ती जाती है और ये दिल दिल तो बच्चा ही रहता है। तुम भले 60 के हो या 55 के, कहां भूलते हैं दिन बचपन के। वैसे बचपन ही क्यों, जवानी, प्रेम, प्यार, एक दूसरे से मिलने की हर घड़ी भी तो उन महकती यादों के साथ ही है जो हमने साथ साथ चलते हुए गुजारी है। कुछ भी कहो, इन चांदी से चमकते बालों में जो नरमी है वो बादलों में भी नहीं। तुम्हारे मीठे बोल आज भी धड़कनों को जमा बनाने का हुनर रखते हैं। वैसे हम भी कम नहीं, आज भी जिस गली से निकल जाएं, हसीनाएं जान छिड़कती हैं, आहें भरती हैं। पर क्या करें, तेरे चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखें। उम्र की ये ढलती शाम भी तेरे जुल्फ के साए में बितानी है, ना इसके सिवा कुछ चाहा, ना इससे बढ़कर ये जिंदगानी है। तो ये हमारी आज की इबारत है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द छुपे हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही एक थीम भी इसमें छुपी हुई है जो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचानी। वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हमारे साथियों को और हमारे साथियों ने उम्र को लेकर बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गूगल का जमाना तो अब आया, पुराने जमाने का असली गूगल अगर कोई है तो वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन ही हैं, जिनके पास अनुभवों का खजाना होता है। पुराने जमाने में कोई अच्छे कार्य शुभारंभ करने से पहले या विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इस बात पर गुजराती मुहावरा भी है, गेड़ा गाड़ा वारे, यानी मतलब दलदल में फंसी बैलगाड़ी हो या जीवन रूपी गाड़ी हो, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभव से बाहर निकाल सकता है। तो इन्होंने वरिष्ठ श्रोताओं को और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी छोटे बड़े मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप भी हमें भेजिएगा बहुत सी बातें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि उम्र कैलेंडर की तारीखों से नहीं स्वयं के नजरिए से बढ़ती है। शरीर भले 55-60 का हिसाब रखने लगा है पर दिल ने घड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वो आज भी उसी आंगन में कूदता है जहां बचपन में कूदता था, उसी गली में खड़ा है जहां पहली बार धड़कनें तेज हुई थी। लेकिन ढलती उम्र के साथ जब बालों में सफेदी आती है तो बढ़ती उम्र की निशानी नहीं होती बल्कि जीवन में मिले अनुभवों का प्रमाण पत्र होती है और दिल का बचपना मिजाज इस बात का सबूत है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने उस बचपने और जवानी को जिंदा रखा हुआ है। जो तो आज कोई भी गीत सुनकर जो मुस्कुरा देता है जहाँ जीवन की ढलती शाम भी किसी नए सवेरे से ज्यादा हसीन लगती है। भाई बेहतरीन बातें आप लिख भेजते हैं कोई भी विषय हो, लेकिन ये भी तो बताइए कि उम्र को आप किस तरह से देखते हैं। क्या कोई ऐसे काम है जिन्हें आप अब नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने की अब उम्र नहीं रही। बताइए हमसे और साथ ही बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसे लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यह हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अतिवृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर लय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक, और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कहने कि वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए आखिरकार बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचता है। ढलती उम्र में प्रगल्भता और अनुभव का साथ बुजुर्ग इंसान को अधिक समर्थ बना देता है, साथ ही साथ खुद के भीतर उत्साह से भरे बचपन को जिंदा रखना इसी में उसका बड़प्पन है, सुख समृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस की अनेक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि अगर हमारे बहुत से श्रोता वरिष्ठ नागरिक हैं भी और बहुत से नहीं भी हैं, लेकिन उनके आसपास तो जरूर वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा किस काम के लिए टोका जाता है और उन्हें वो टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ये हमें बताइए आप। और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि आपके लिस्ट में क्या ये गीत शामिल था।
4: क्या
5: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
4: क्या क्या क्या

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते। पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे हैं कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धनपत्नी को सुनाता हूं और कहता हूं बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धनपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूं कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताजा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें। वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं, पर उम्र छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक के साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में भी हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफ़ेद हो गए, लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुँच गए। तमाम मौक़ों पर लोगों ने बाल काला करा लीजिए सलाह दी, लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रखकर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाएं तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं। क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना है हमारे साथी का, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग घर के जो लोग हैं परिवार के सदस्य हैं वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है, लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है, अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है, बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है, इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है, यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है, फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है, लेकिन उसमें जो कोमलता है वो बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमत्ता के भी द्योतक होती है, इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है, शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

0: भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत के कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और अब उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सफेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमें भी ऐसा लगता है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भाई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्योहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की जरूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब 50 बार देते थे। घर के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे जब हम उस दौर पे थे यानी माता पिता बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ना कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नई नई रुचियां और शौक शामिल होते जाते हैं। जब हम बचपन में थे यानी वो कह रहे जब हम यंग थे तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल। लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए टोका जाता है और आपने किस बात के लिए सबको सबसे ज्यादा टोका है।

बहू रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के युवा भले ही इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं और उनके प्यार का ढंग भी AI से प्रभावित हो रहा है। घर के बुजुर्गों का प्यार देखें, उनके आगे ये मॉडर्न प्यार बिल्कुल टिकता नहीं। जरा सी देर में गुटरगू और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थी। अफसोस साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियां। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है, जो कभी लौट कर नहीं आता। वही हमारे साथी कहने कि हम भी सीनियर हैं पर फिर भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना, डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और जिन चीज़ों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आपके भले के लिए टोका जा रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की भारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल के धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज की धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उतर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है, हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें, जीवन के जवानी के मीठे पल, दो दिलों का टकराना, बुढ़ापे में उन सुनहरे पल को याद करना। शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती के ये वरिष्ठ उद्घोषक है जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है, हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज भी पहचान लीजिए।

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वही हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूँ पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूँ। मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूँ। विविध भारती में भी एक्टिव हूँ। फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: नजर नहीं हट।
1: कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इस संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही

0: अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: को हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: की सहेली।
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
2: और इतने सारे दिन लेकर आए।
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
2: हाँ।
1: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो

0: लेकिन एक गीत सुनने के बाद है ना,
1: देखिए गीत संगीत आते,
0: क्योंकि संगीत का दिन है ना तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया
1: बात। कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं,
1: हाँ,
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी. क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं, जरा बताइए तो. सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना.
0: हाँ,
1: बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो एक तो है शाकाहार दिवस.
0: हाँ,

0: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया। वैसे शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है।
1: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
0: हाँ वो फलाहार भी वही है। तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया। और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये। और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, वैसे तुम्हें क्या पसंद है,
1: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
0: देखो एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
1: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है। तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे।
0: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या पसंद है, चाय की कॉफी,
1: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: या दोनों ही नहीं मिलेगा।
0: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है। तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है, है ना।
1: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें कर रहे हैं, शाकाहारी जिनको खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि सभी एक ना एक
0: शाकाहार के साथ में
1: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शाकाहारियों की इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है। तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
0: बिल्कुल, लेकिन आज हम कोई भारी भरकम सा आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए खाने के समय भाषण सुनना ऐसा ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का। तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे। तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोल वाला?
1: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे। लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
0: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर,
1: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर। तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की। तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में
0: हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
1: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है, तो बड़ा आनंद भी आता है।
0: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है। बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार से कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं। तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
1: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
0: बिल्कुल, लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में, चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
1: हाँ, तो वही तो बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो, अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका

0: तो दो, तो
1: बिल्कुल
0: अलग अलग तरह से। अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई
1: हाँ,
0: मुंह ना तेज
1: लौकी का
0: सिकुड़ता है।
1: कोफ्ता, वाह क्या
0: हाँ
1: क्या बात है।
0: देखिए, लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका
1: नहीं,
0: है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी सी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो
0: हाँ
1: किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है। व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना, तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: थोड़ा दिमाग
0: थोड़ा
1: हटे वहां से।
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
1: बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
0: हाँ।

0: भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
2: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
3: सबको इंतजार होगा,
2: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
3: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला हैं। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
3: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
2: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और उसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
3: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
2: जी। तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
3: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
2: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
3: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
2: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना, और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
3: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल पायल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
2: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
3: यही सबसे बड़ी बात है कि हाँ। अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
2: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
3: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत।

0: तो
1: बिल्कुल
0: जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
1: बिल्कुल। और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे, वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं, नहीं, तो आप आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी चीज़ें पसंद।
5: क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, हो जाएगी।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नहीं।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ
5: जाए
4: और अकेले भी हमें खाया जा सके। खाया तो नहीं जा सके, बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो उसका पनीर जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को बैगन के साथ भी खा
4: आलू
5: सकते
4: को किसी
5: हैं।
4: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हैं। ऐसी सब्जियां जिनके साथ नहीं पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
4: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल
5: लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है जी। अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, और जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया होगा हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं। वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है। और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: बिल्कुल, कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ

0: चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
1: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भाग दौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
0: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
1: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके।
1: हाँ।
0: तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी कह रही है संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत, सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
1: वाह, क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
0: एक बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए
1: जी।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रही अपना एक्सपीरियंस की, जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को, उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना, संगीत का जादू।

0: वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप वो तब सुनिए कहीं, लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
0: हाँ, और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
1: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
0: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है, उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
1: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
0: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया। लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
1: बताया। हम उसी पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाए, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाए। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है कि उनके दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिया ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें, तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं तो वो बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी लेता हूँ, तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी है और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: शुक्रिया।
1: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
2: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन चाय ने बाजी मार ली है।
1: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
2: आलू भी जीता है।
1: और हमारे एक साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है। कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब हो जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही
2: है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको। और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला में चौ, सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है, सच में
1: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है। और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या, मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
2: कॉफी पियेंगे आज तो, कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
1: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
2: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0226702688। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला, ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं, और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है, लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
0: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
1: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा।
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है, और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है,
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजहा धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राँझा का ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही
1: अरे सर,
0: है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे
0: अच्छा,
1: और आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
0: अच्छा ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है,
0: अच्छा
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं,
0: हाँ
1: नुकसान हो गया है
0: जी जी समझ रहे
1: जो
0: हैं,
1: थोड़ा
0: मौसम
1: बहुत।
0: खराब हो गया ना अचानक इसलिए।
1: हाँ, थोड़ा
0: अच्छा हमें
1: हमारा।
0: बताएं, विविध भारती
1: हाँ
0: इतने
1: जी
0: ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम वो जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सरसरा के आवाजें जो है धीमी हो जाती, फिर तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM
0: जी
1: पे चलता था हमारे यहाँ।
0: जी
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पे सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से भर बिजली भर, जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला।

0: हमने।
1: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
0: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, असेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
1: अच्छा, बढ़िया।
0: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा अच्छा। ही आ जाता है सुनकर।
1: अरे बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
0: गाना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
1: बस ऐसे जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
0: सर।
1: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना उनके सराफ मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है। तो इन दिनों जो है वो कौन कौन

0: ये साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये गणेशपुर, गुड़गावा, मदन नगर, टुकुडांड, सिलफिली, कनकनगर, बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, सोनगरा, दुर्ती, मायापुर, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 66 है। ये भगवानपुर, नवापारा, पेंडारी, धंधापुर, उधवा कटरा, कुंदी कला, रेवतपुर, जामदोहर, अखोर, सिधमा, सोनहत, धौरा, गैना, नौगई, उचेरवा, सिलाजू, आनंदपुर, महावीरगंज, इंदरपुर, फुलवार, लुर्गी, टकिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये रामनगर, फुनगी, पतरापारा, झिरमिटी, जजगी, मोहनपुर, मानपुर, पूटा, लक्ष्मणगढ़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा, पत्थलगांव, बगीचा और दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 65 है। ये लोटापानी, मयूरचुंदी, जामचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, बंदरचुआ, खारी बहार, कोरंगामल, सागजोर, गारीघाट, सिकीरमा, बिदुरपुर, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, कुर्डेग, सरई टोली, केंदा पानी, जाम पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये आमापाली, आमगांव, ओंगना, रुपुंगा, पोटिया, धवईडांड, कुड़ेकेला, बंगरसूता, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये जोगीपाली, चोर भट्टी, पीड़िया, नोन बिर्रा, कोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 54 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 82 है। ये जुनवानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव, सलियारी, छर्रा टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार

0: हर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम घर द्वार। समय होगा शाम 5:30 का। घर द्वार कार्यक्रम में आज के गोठ के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर। साथ ही आप सुनेंगे योजना के अंतर्गत PM मुद्रा योजना के बारे में। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे शाम 6:20 पर। फिल्म संगीत दोबारा सुनिएगा शाम 7:15 पर। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत का। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
6: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
7: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश कार्यक्रम शामे गजल। आइए सबसे पहले सुने जगजीत सिंह को। रचना है अंदलीप शादानी की।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

इब्न इंशा की लिखी गजल अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी जगजीत सिंह की। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुने आमिर मिनाई की रचना जगजीत सिंह के स्वर में।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही शाम गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर द्वार।

0: घर द्वार कार्यक्रम सुनैया सब्बो श्रोता संगवारी दीदी बहनी मल्ला सविता के राम राम जय जोहार। तब बनियो चला आवाज आनंद। पहले हमन आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के हमारे गोट के विषय हवे स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता की ओर एक कदम। चर्चा के अंतर्गत चर्चा करबो वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। योजना के अंतर्गत जानबो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। आवाज के हमारे क्रम हवे माटी के गीत, ते क्रम में सुनबो आप सबो जन के पसंद और फरमाइश के सुघर लोकगीत। तो चला वो अपन गोट बात की शुरुआत करे जाए। बनियो अभी चलत हुए कुवार महीना के पितर पक। अब ये समय होते हमला अपन पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान दे के, अपन पूर्वज मन के आशीर्वाद ले के। हमारे संस्कृति में कुवार महीना के 15 दिन पितर पक्ष के विशेष महत्व थे। अपन अपन श्रद्धा और शक्ति के अनुसार सबो जन पितर मन पर पूजा अर्चन तर्पण श्राद्ध करते हैं और मन के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितर पक्ष के तुरंत बाद शुरू होते हैं नवरात्रि, और अभी नहीं गाँव में शहर में जमुआंग दुर्गा पंडाल की तैयारी भी शुरू हो गए हुए। बहनियों कुवार महीना लगे के संगी मौसम में परिवर्तन भी होने लगते। वर्षा महीना खत्म होते रही थे और शरद ऋतु या ठंडा महीना की शुरुआत होने लगते। मौसम परिवर्तन के कारण अभी के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बढ़ जाते। दिन के समय में तेज धूप और सुबेरे और रात के समय हल्का ठंड के कारण शरद गर्म होते और स्वास्थ्य संबंधी समस्या आते। ते मौसम में हमें अपन स्वास्थ्य के भी विशेष ध्यान रखना होते। बनियो स्वच्छता ही सेवा अभियान ये शुरुआत 17 सितंबर ले लेके 2 अक्टूबर तक होते। हर साल ये समय है स्वच्छता अभियान के रूप में मनाए जाते। ये अभियान के उद्देश्य है स्वच्छ भारत विकसित भारत, स्वच्छता में सहभागिता। स्वच्छता ला केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सबो जन के हमला आदत बनाना होगी। देश के हर एक आदमी के जिम्मेदारी हवे स्वच्छता। जब यह हर एक जन आंदोलन के रूप लही तबे छमन स्वच्छ और विकसित भारत के सपना ला साकार कर सकबो। बनी अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान रेलवे स्टेशन के साफ सफाई करे जाते, श्रमदान करे जाते, पौधारोपण स्वच्छता रैली के माध्यम ले जागरूकता अभियान चलाए जाते ताकि सबो जन स्वच्छता व साफ सफाई व जागरूक बने। कचरा प्रबंधन व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाए जाते। ये अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मी मन के योगदान ला सम्मान दे बर, मन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करे बर विशेष शिविर मन के आयोजन भी करे जाते। योजना के मुख्य उद्देश्य है जन भागीदारी ला बढ़ाना। देश के हर नागरिक संस्था और सरकार ला एक साथ साफ सफाई के काम में जोड़ना और स्वच्छता पर स्वैच्छिक रूप ले श्रमदान करके सब अंग साफ सफाई करना और सबो जनला ये साफ सफाई में प्रेरित करना। ये तो इस समाज के गोट आवाज सुना जाए ये संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: बनी हो हर साल आज के दिन यानी कि 1 अक्टूबर ला दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाए जाते। ये दिवस के मुख्य उद्देश्य है समाज में बुजुर्ग मन के प्रति सम्मान, मन के अधिकार और उनका योगदान ला याद करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 14 दिसंबर 1990 के दिन ले ये वृद्धजन दिवस मनाए की घोषणा करेगी। तब ले हर साल आज के दिन ला वृद्धजन दिवस के रूप में मनाए जाते। बनी हो वरिष्ठ नागरिक मन के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अकेलापन, अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना भी आज के दिवस के उद्देश्य हवे। वृद्धजन मन के संग हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय ला रोकना, सामाजिक व्यवहार

ला बेहतर बनाना या सबो बर समाज ला जागरूक करे बर ही ये दिवस मनाए जाते। बनियो वृद्ध जनमन हमर समाज के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हवे, लेकिन वृद्धावस्था में आए के बाद कई परिवार में मन ला गैर जरूरी मान लिया जाते और मन परिवार पर बोझ बन जाते। ग्रामीण परिवेश में हमारे वृद्ध मन की स्थिति और ज़्यादा ही सोचनी हवे। नौकरी और व्यवसाय के कारण युवा शहर में निवास करते और वृद्ध जनमन शहर में अपन घर परिवार परिवेश ला छोड़ के जाना नहीं चाहे, वहाँ मन अकेलापन महसूस करते हैं और गांव में रह ले मन के देखभाल नहीं हो पाए। युवा पीढ़ी और वृद्ध जन मन के पीढ़ी अंतराल के कारण विचार में भी अंतर होते, दोनों के सोचे के नज़रिया अलग अलग होते, ये भी एक समस्या के कारण हवे। और इस सबों के कारण ही आज वृद्धाश्रम के संख्या बढ़त जात हवे। तमल अपन सोचला बदलना हुई, अपन घर के बुजुर्ग मन के संग सामंजस्य बैठा के चलना हुई ताकि वो मनी अवस्था में अपन ला उपेक्षित महसूस नहीं करे। तब ये तो हुई आज की हमारे चर्चा। अब आओ आज के हमारे क्रम हवे माटी के गीत, तो चला सुना जाए ये माटी के गीत में आप मन के पसंद और फरमाइश के गीत।

संगियो स्वागत हवे आप संबोधन के आप मन के पसंदीदा और फरमाइश के सुगर लोकगीत के कार्यक्रम माटी के गीत मा तो कार्यक्रम सुनैया सबो दीदी बहनी संगवारी मल्ला सविता के राम राम जय जोहार। तो संगियो आज के हमार जो पहला गीत हवे ओकर फरमाइश करे वाला हमार श्रोता संगवारी मन हवे ईमेल के माध्यम ले हमार तक संदेश भेजे हमें माया चौक मेघा पारा से रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल टेकलाल पटेल कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा ले हमें अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी लालिमा साहू खुशान साहू निशान साहू आर्यनगर कोहका भिलाई ले हमें उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल और धमदा ग्राम सुखरी कला ले हमें अमित जंगेल शकुन जंगेल आरुषि ओशिका आरवी जंगेल अंजलि जंगेल और ये गीत की फरमाइश करे वाला हमारे संगवारी मन हमें गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी और पत्र के माध्यम से गीत के फरमाइश करे वाला हमारे श्रोता संगवारी हमें श्री सिंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत ले ग्राम बेलर गांव ले मधु देवांगन लक्ष्मी संगीता रूपा प्रभा गायत्री देवांगन छत्तीसगढ़ रिंगनी ले हमें अरुणा वर्मा प्रियंका बंछोर और महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले हमें फिरंता साहू दिलोरिन साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार और सिमरा ले हमें लौकुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य आशीष और प्रकाश सेन। तो चलो आप सबो श्रोता संगवारी मन के फरमाइश में सुना जाए ये गीत देकर बोल हवे मोर छत्तीसगढ़ के माटी बंदों तोला में।

प्रसंगी हो सुने ने घर लो गीत। अब आज के जोन हमारा अगला गीत है एक फरमाइश करे वाला जोन हमारे श्रोता संगारी मन हमें पत्र के माध्यम ले हमारे तक अपन संदेश भेजे हमें ग्राम द चुटाले ददुआ साहू भूरी साहू रेखा मोतीला साहू दुर्गा चौक रायगढ़ ले हमें गेंदलाल सिरवास बिहारी पटेल नरेंद्र साहू संतोष सिरवास दिलीप साहू और गेंदू भाई बाजार पारा बेमेतरा ले हमें भाई भरतलाल सिन्हा लव कुमार और लक्की सिन्हा और ईमेल के माध्यम से हमारे तक अपन फरमाइश भेजे हमें माँ बमनेश्वरी धाम रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी ले जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू नेहा देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू वार्ड 34 कन्हारपुरी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें मंथिर दास साहू कुमारी भेविका साहू संतोष कुमार साहू कुमारी देवी साहू चमनला साहू दीपाली देवी साहू और गुणाक्ष देव साहू करी बदार पुरुषोत्तम निर्मल शारदा निर्मल गीतिका लोचन विद्यार्थी देवेंद्र लक्ष्मीना चंद्रिका निर्मल जमुना निर्मल इष्टभु श्रोता श्रृंगारी हमें हठौत बदार लाहौदले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल सावरगांव महाराष्ट्र ले रघुनाथ पाटिल नारे पुष्पा ताई नारे अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री केवट अंजलि केवट रुद्राणी केवट कृष्णा केवट चंचल केवट रायगढ़ वार्ड नंबर 3 ले हमें रोहित जयलक्ष्मी मदनपुर कौरधा ले हमें श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू शिवम साहू भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ ले हमें हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू छत्तीसगढ़ सहसपुर लोरमी ले हमें छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू रामकिशन साहू दुलीचंद साहू सतीबाई साहू और सत्यम साहू तो चलो श्रोता श्रृंगारी आप सबो जन के फरमाइश पे सुना जाए गीत के बोल हमें कौन सुर बाजो मैं तो घुनी और स्वर दे हमें कविता हिरकाने

आज के हमारा अगला जो गीत है ओकर फरमाइश करे वाला श्रोता संगारी मन हमें पत्र के माध्यम ले हमारे तक फरमाइश करे हमें ग्राम बंगला मटिया बालोदले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशु आशुतोष अंगारे भूसुधा छत्तीसगढ़ ले हमें भगवानी संतोषी गजेंद्र चिराग चंद्र प्रकाश नेहा सेन ग्राम बगबुड़वा पथरिया ले हमें नरेश नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम और ईमेल के माध्यम से हम तक अपना संदेश भेजे हमें रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश साहू चित्रलेखा साहू शुभम सेजल साहू साले भाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुव तो चलो आप सब जन के फरमाइश पर सुना जाए ये गीत जिकर बोल हवे कतका तोर महिमा ला गांव ए भुइया के भगवान और में स्वर दे हमें निर्मला बेलचंदन संतोष शुक्ला

संगवारी हो, सुने अभी अपन के फरमाइश के ये गीत। और आज के जो हमार अगला गीत हवे, एकर फरमाइश करे वाला श्रोता संगवारी हवे, पत्र के माध्यम से हमारे तक फरमाइश भेजे हवे, ग्राम पहरा अहिरवाड़ा जिला दुर्ग ले पोषण बंछोर चंद किरण प्रीति छाया बंछोर अम्बा धाम सनीचेरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना जैन श्रेया जैन सौरभ जैन शौर्य जैन और शुभम जैन। धरसीमा ले हमें छेदू लाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव। और दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले हमें छन्नू लाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यादव रानू खुशी प्रवीण साहू और श्रीएल यादव। तो चला आप सबो जन के फरमाइश पर सुना जाए गीत, जेकर बोल हमें चल धरती ला संवार।

संगीयों अभी सुने गीत, जिला स्वर देख रही संतोष शुक्ला। श्रोता श्रृंगारी हो गीत के संगी आप मन से विदा लेह की बेला होते, तगले माटी के गीत में फिर आप मन संग मुलाकात होही। तब तक दब पर अपन श्रृंगारी सविता ला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।

घर द्वार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और

0: संकल्प अभियान ये कार्यक्रम। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम रात्रि 8 बजे, 8:30 पर फिल्म संगीत। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। आज यूपीएससी के शताब्दी समारोह ला संबोधित करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने की परीक्षा आयोजित करिया संस्था मला घलो सुधार ऊपर काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रगति में आज नई दिल्ली में राखे के बैठका में शामिल हुआ थे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री। महानदी जल विवाद ला सुलझाए पर हुआ थे गोट बात। और प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 1812 संविदा पद

0: मां भर्ती भर ऑनलाइन आवेदन के काम आज ले शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिने कि देश के रिफॉर्म एक्सप्रेस में तेजी ले आगू बढ़त हे और परीक्षा आयोजित करैया संस्था मन ला घलो ऐसा सुधार ऊपर काम करना चाहिए जेखर देश ला जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह ला संबोधित करत श्री मोदी कहिने कि परीक्षा ला सिर्फ एक आयोजन नहीं मानना चाहिए बल्कि ये युवा मन के भविष्य ले जुड़े है। प्रधानमंत्री कहिने कि यूपीएससी के 100 साल के यात्रा में पीढ़ी सरकार तकनीक और सिलेबस बदले है फिर ये संस्था ऊपर भरोसा पहली जैसा ही अटूट बने हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिने कि सरकार है देश भर के किसान मन के आय बढ़ाए के संगे संग उखर हित के रक्षा पर हर संभव कोशिश करत रही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहिने कि सरकार है बछर 2027-28 मार्केटिंग सीजन पर रबी फसल मन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी ला मंजूरी दे दे है। उमन कहिने कि ये फैसला ले ये सुनिश्चित हो गये है कि देश भर के लाखों किसान मन ला उखर उपज के उचित मूल्य मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पगरेती में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबा बेरा ले चलत महानदी जल विवाद ला सुलझाए बर आज नई दिल्ली में एक विशेष बैठक आयोजित करी जावत है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुआ थे। दिल्ली रवाना होए के पहले मुख्यमंत्री श्री साय रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत कहिने कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री मन केंद्रीय जल आयोग ला लिखित रूप ले आश्वस्त करे है कि दोनों प्रदेश मन की व्यापक हित ला ध्यान में राखत आयोग कोती ले गए फैसला निर्णय दोनों राज्य सरकार ला मान्य होही। मुख्यमंत्री यह सिंगापुर प्रवास के संबंध में कहिने कि सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन डहा ले आयोजित सिंग फोरम में छत्तीसगढ़ ला सहभागी बने के मौका मिले है ये प्रदेश भर खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में काली 2 अक्टूबर ले रिफॉर्म उत्सव के संग विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करे के प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान के संग एकीकृत रूप ले आयोजित होइया ये अभियान में ग्राम सभा मल्ला गांव के विकास के प्राथमिकता तय करे और योजना मनु पर सीधा संवाद के प्रमुख मंच बनाए जाही। ग्रामीण मल्ले उखर जरूरत विकास के कमी उपलब्ध संसाधन और जरूरी कामों पर सुझाव लेके यही मल्ला ग्राम पंचायत के अवैया विकास योजना में शामिल करे जाही। रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभा मन में VBG रामजी योजना के तहत 125 दिन रोजगार के गारंटी 15 दिन में रोजगार समय में मजदूरी भुगतान 375 अनुमय काम मन ले गांव के जरूरत के मुताबिक काम के चयन आजीविका संवर्धन ग्रामीण अधोसंरचना और अन्य अन्य योजना मन के अभिसरण के संगे लखपति दीदी योजना आजीविका गतिविधि जैसन विषय में गांव वाले मन ले संवाद होही। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल रिपोर्टेड गांव मन में काली 2 अक्टूबर गांधी जयंती में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित करे जाही। ऐसन गांव जिहां पेयजल योजना के काम पूरा हो गए है और 15 दिन के सफल ट्रायल रन पूरा हो गए है वहां ये योजना ला निर्धारित हैंडओवर प्रोटोकॉल के चलत ग्राम पंचायत और समुदाय ला संचालन पर सौंपे जाही। जल जीवन मिशन के संचालन है सबो कलेक्टर मन ला जरूरी सत्यापन प्रमाणीकरण और दस्तावेजीकरण बेरा मां पूरा करे के निर्देश देही। योजना मन ले जुड़े संबंधित प्रगति पूर्णता प्रमाण पत्र जल गुणवत्ता जांच और रख रखाव जुड़े जानकारी जल जीवन मिशन के पोर्टल में घलो दर्ज करे जाही। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 1812 संविदा पद मन में भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन के काम आज ले शुरू हो गए है। अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकें। ये पद में भर्ती कंप्यूटर आधारित चयन परीक्षा CBT के माध्यम ले करे जाही। भर्ती कामला लेके स्कूल शिक्षा विभाग आवेदन परीक्षा के संभावित तारीख घलो जारी कर दे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाजे समाचार कोती। बस्तर ओलंपिक के तीसर संस्करण पर पंजीयन के काम आज ले शुरू हो गए है, जौन 30 अक्टूबर तक जारी रही। तीन चरण में हो या प्रतियोगिता मन के विकास खंड स्तर में आयोजन 1-13 नवंबर के बीच हो ही। बस्तर ओलंपिक में 11 खेल में प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। जूनियर वर्ग में 14-17 बच्चर के बालक बालिकाएं और सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष भाग ले सकी। बस्तर ओलंपिक के आयोजन लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की बस्तर क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ मौका और उचित मंच उपलब्ध कराए के है। काली 2 अक्टूबर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हरे। ये मौका में रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय खादी सम्मेलन ग्राम उद्योग विकास प्रदर्शनी के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम के पगरेती ग्राम उद्योग और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करही। ये मौका में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और खादी ग्राम उद्योग ले जुड़े आने आने संस्थान मन और संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रही। छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड डहर ले काली ले अवैया बच्छर 31 मार्च तक खादी कपड़ा के खरीदी में 25% के विशेष छूट दे जाही। ए मौका में सेल्फी विद खादी अभियान के घलो शुभारंभ करे जाही। प्रदर्शनी में खादी और ग्राम उद्योग ले जुड़े उत्पाद, गतिविधि और ग्रामीण उद्यमिता के संभावना मल्ला प्रदर्शित करे जाही। आयुष्मान योजना में बढ़ ज्यादा जोखिम श्रेणी वाले छत्तीसगढ़ के 17 अस्पताल मन के राज्य स्तरीय जांच करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के चिन्हांकन के आधार में जांच दल है ये अस्पताल मन के निरीक्षण करके ओखले जुड़े दस्तावेज मल्ला लीन। एमा रायपुर के 7, बिलासपुर के 3, दुर्ग के 2 और अन्य अन्य जिला के 5 अस्पताल शामिल है। दस्तावेज मन के विस्तृत जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करे जाही। 28 और 29 सितंबर के रायपुर के 2 अस्पताल ऊपर योजना ले अलग करे के कार्रवाई घलो करेगी। आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले जन सेवा ले देश सेवा के तहत विशेष कार्यक्रम मन के श्रृंखला प्रसारित करे जावत है। यही कड़ी में आज संझा 7 बजे जल जीवन मिशन में ले गए ये मिशन के अतिरिक्त संचालक ओंकेश चंद्रवंशी ले गई भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। ये कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले कर ही। बलरामपुर रामानुजगंज जिला में प्रदेश के पहली कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित करे जावत है। एकर उद्देश्य ग्रामीण युवा और स्व सहायता समूह के माई लोगिन मल्ला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोजगार के मौका उपलब्ध कराना है। सेंटर के स्थापना पर जिला प्रशासन और AI कंपनी के बीच समझौता हुए है। पायलट चरण में 10 सीट मन के सेंटर शुरू हो गए है, जी हां, AI और डेटा लेबलिंग के प्रशिक्षण दे जाही। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर डहले राजीव में स्वच्छता अभियान चलाएगी। ये दौरान विद्यार्थी मन श्रमदान करके तीर्थखार के क्षेत्र मन के सफाई करी। ओमन लोगन मल्ला कचरा ला अलग करके निर्धारित जगह में निस्तारण करे बर एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग बंद करे और खुला में कचरा नहीं फेंके के संदेश दीन। ये मौका में विद्यार्थी मन डहले स्वच्छता रैली घलो निकालेगी। उन्हें संस्थान के साहित्यिक समिति लिटराटी डहले स्वच्छता ले समृद्धि विषय ऊपर केंद्रित निबंध लेखन प्रतियोगिता घलो आयोजित करेगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। आज UPSC के शताब्दी समारोह संबोधित करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की परीक्षा आयोजित करिया संस्था मल्ला घलो सुधार ऊपर काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रगति में आज नई दिल्ली में रखे गए बैठक में शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री। महानदी जल विवाद ला सुलझाए बर हुआ थे गोटबात और प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 1812 संविदा पद मन में भर्ती बर ऑनलाइन आवेदन के काम आज ले शुरू। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: करण अर्जुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका 2 स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चमत्कार फिल्म का गीत। स्वर थे कुमार सानू और अलका याग्निक के, गीतकार आनंद बख्शी और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण का गाया हुआ गीत फिल्म वीर जारा से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री हो रहे हैं शामिल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में छूटे हुए और नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और महात्मा गांधी की जयंती पर कल 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
11: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल आयोग को लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि दोनों प्रदेशों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा लिया गया निर्णय दोनों राज्य सरकारों को मान्य होगा।
12: और आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जो वर्षों से जल विवाद चलते आ रहा था उस पर बैठक होगी। और अब चूंकि दोनों प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और CWC को हम लोगों ने दोनों CM ने लिख के दिया है कि दोनों प्रदेश के हित में जो भी निर्णय CWC देगा उसको दोनों प्रदेश की सरकार मानेगा।
10: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में छूटे हुए और नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए पात्र नागरिकों के साथ ऐसे युवा और पहली बार पात्र बने मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह कार्य BLO द्वारा घर घर जाकर कर मतदाता सूची के अद्यतीकरण की प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करने के लिए ECI नेट मोबाइल ऐप या फिर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 6 में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रदेश में कल 2 अक्टूबर को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में गांवों के भावी विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इनके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष ग्राम सभा के दौरान रिफॉर्म उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल रिपोर्टेड गांवों में कल जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे गांव जहां पेयजल योजनाओं का काम पूरा हो चुका है और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा हो गया है, वहां योजनाओं को निर्धारित हैंडओवर प्रोटोकॉल के तहत ग्राम पंचायतों और समुदायों को संचालन के लिए सौंपा जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कल 2 अक्टूबर को भारत स्काउट्स और गाइड्स द्वारा रायपुर के बूढ़ापारा में स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। यह प्रार्थना सभा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा करेंगी। कल महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय खादी सम्मेलन और ग्रामोद्योग विकास प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामोद्योग और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करेंगे। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कल से अगले साल 31 मार्च तक खादी वस्त्रों की खरीदी पर 25% की विशेष छूट दी जाएगी। इस अवसर पर सेल्फी विद खादी अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के तहत आज के अंक में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। राज्य में इस योजना के तहत राशन कार्ड के आधार पर सभी निवासी परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आर्थिक परेशानी इलाज में बाधा न बने। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में दो क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में से 97% अस्पताल सक्रिय हैं। यह आंकड़ा योजना के प्रति अस्पतालों के विश्वास को दर्शाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के पात्र परिवारों को समय पर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
10: आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा जन सेवा से देश सेवा के तहत विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे जल जीवन मिशन पर इस मिशन के अतिरिक्त संचालक ओंकेश चंद्रवंशी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। जन सेवा से देश सेवा के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही बाइक यात्रा आज जांजगीर चांपा पहुंची। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रियों का स्वागत किया। श्री चौधरी ने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करते हुए उन्हें सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 3 चरणों में होने वाली प्रतियोगिताओं का विकासखंड स्तर पर आयोजन 1 से 13 नवंबर के बीच होगा। बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष के बालक बालिकाएं और सीनियर वर्ग में महिला और पुरुष हिस्सा ले सकेंगे। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1812 संविदा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर भर्ती कंप्यूटर आधारित चयन परीक्षा CBT के माध्यम से की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदन और परीक्षा की संभावित तिथियां जारी कर दी है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रदेश का पहला कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और स्वसहायता समूह की महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सेंटर की स्थापना के लिए जिला प्रशासन और AI कंपनी के बीच समझौता हुआ है। पायलट चरण में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जहां पर AI और डेटा लेबलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। और दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने 61 लाख रुपए से अधिक के ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री हो रहे हैं शामिल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में छूटे हुए और नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और महात्मा गांधी की जयंती पर कल 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन। विशेषज्ञ हैं जल जीवन मिशन के अतिरिक्त संचालक ओमकेश चंद्रवंशी और प्रस्तुतकर्ता हैं प्रादेशिक समाचार एकांश। तो आइए सुनते हैं सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन।
14: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश

0: अंश रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित रही है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के तहत हमारा आज का यह अंक जल जीवन मिशन पर केंद्रित है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त मिशन संचालक श्री ओंकेश चंद्रवंशी। ओंकेश जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार
0: ओंकेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन क्या है और इस मिशन को शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है।
1: जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया। इसे मिशन मोड में कंप्लीट करने के लिए इसे मिशन का नाम दिया गया
0: जी।
1: वैसे तो 7वीं अनुसूची में जो पेयजल की उपलब्धता है वो राज्य का सब्जेक्ट है
0: जी,
1: परंतु यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें कुछ तेजी से काम करना है
0: जी,
1: और एक समय सीमा में सारे ग्रामीण घरों को नल का कनेक्शन देके पानी पहुंचाना है, इसलिए जल जीवन मिशन की आवश्यकता महसूस हुई
0: जी।
1: जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक योजना थी
0: जी,
1: इसमें राज्य की समान भागीदारी थी
0: जी,
1: राज्य को और केंद्र को मिलकर इस काम को पूरा करना था
0: जी।
1: प्रत्येक ग्रामवासियों को, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी मिल सके, इसके लिए ये योजना बनाई गई है
0: जी।
1: आप अवगत हैं कि प्रायः ही पूरे देश में पानी भरने के लिए महिलाएं ही आगे होती थीं।
0: बिल्कुल, कहीं दूर में पानी के जो स्रोत है उससे फिर उन्हें पानी
1: लाना पड़ता
0: जी।
1: था तो उनके इन कष्टों को बचाने के लिए, उनके समय को बचाने के लिए ये एक कार्यक्रम बनाया गया
0: जी। सर, ये बताएं कि जैसे जो जल जीवन मिशन है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक कितना काम हमारे प्रदेश में हुआ है, और यदि हम मिशन शुरू होने के समय की स्थिति में और अभी वर्तमान स्थिति में यदि तुलना करें तो कितना बदलाव आया है।
1: जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया, उसकी घोषणा हुई
0: जी।
1: क्रियान्वयन थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि ये घोषणा होने के तत्पश्चात ही कोविड का एक दौर आया और कार्य प्रभावित हुआ। जब ये घोषणा हुई उस समय छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों में लगभग 3,20,000 नल कनेक्शन थे, जो उस समय 6.40% था
0: जी।
1: इस योजना से वर्तमान स्थिति में हम लगभग 80% घरों में कनेक्शन दे चुके हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये हमारी प्रगति जो है वो लगभग 74% की है
0: जी।
1: 20% लक्ष्य हमें अभी भी पूरा करना है
0: जी,
1: जिसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं
0: जी। जैसे आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक वो नल से पानी पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कैसी अधोसंरचना है, किस तरह की नई नई पहल हो रही है या नवाचार हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने अलग अलग विकल्पों पर विचार किया
0: जी।
1: सबसे पहले जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे, दुर्गम क्षेत्र थे
0: जी,
1: और जहां पर विद्युत कनेक्शन नियमित नहीं था या नहीं था
0: जी,
1: उन बसाहटों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने सोलर पंप बेस्ड योजनाएं बनाई
0: जी।
1: ऐसे लगभग 10,000 हमने सोलर बेस्ड स्कीम्स बनाई हैं
0: जी।
1: टोटल हमारी छत्तीसगढ़ राज्य में 30,000 स्कीम के लगभग बनी है
0: जी।
1: इसमें सिंगल विलेज स्कीम बनी है हमारी। सिंगल विलेज उसको बोलते हैं जो एक ग्राम के अंदर ही एक सोर्स होता है, वहां से पानी लेके हम पाइपलाइन के माध्यम से गांव को पूर्ति करते हैं
0: जी।
1: दूसरी एक हमारी योजना थी जो बल्क वाटर ट्रांसफर स्कीम थी
0: जी।
1: इसमें एक क्लस्टर होता है, कुछ गांव का एक क्लस्टर होता है
0: जी।
1: उस क्लस्टर में हम सरफेस वाटर से एक बड़ी योजना बनाते हैं
0: जी,
1: और वहां पर फिर जैसे शहरों में हमको ट्रीटेड वाटर मिलता है
0: जी,
1: ऐसे ही हम गांव के उन क्लस्टर के लिए ट्रीटेड वाटर की व्यवस्था करते हैं
0: जी।
1: नदी से पानी लेते हैं।

0: रहे हैं
1: जी
0: उसको पूरा करने के बाद उसके संचालन संधारण के लिए हम उसे संबंधित ग्राम पंचायत या
1: जी
0: वहां पर जो गठित VWSC है
1: जी
0: उनको हैंडओवर करेंगे। फिर उसके बाद उसको चलाने की व्यवस्था उनको करनी है।
1: अच्छा
0: इसको चलाने के लिए ट्रेंड पर्सन कैसे उनको प्राप्त हो, हम इस पर भी कार्य कर रहे हैं।
1: अच्छा
0: हम एक नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत गांव के किसी एक व्यक्ति को योजना के संचालन संधारण चलाने का, छोटी मोटी जो आवश्यकताएं होती हैं सुधार करने की, उसको पूरा करने का 3 महीने का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं।
1: जी चंद्रवशी जी, जो नल जल मित्र के बारे में आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि कैसे आप उनका चुनाव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नल जल मित्र बनना चाहता है तो वो क्या आवेदन कर सकता है स्वतः होके, या आप आइडेंटिफाई करते हैं या ग्राम पंचायत करती है, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, इसके आइडेंटिफिकेशन का दायित्व तो ग्राम पंचायत का है।
1: जी
0: इसमें एक बेसिक हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है,
1: जी
0: मिनिमम जो कहना चाहिए वो उस गांव का निवासी हो।
1: अच्छा
0: इससे ये फायदा होता है कि वो उस गांव का निवासी है तो कभी छोड़ के जाएगा नहीं,
1: जी
0: और इसके अलावा वो 12वीं पास हो,
1: अच्छा
0: ताकि उसको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं,
1: जी
0: रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं,
1: जी
0: वो रजिस्टर वो बना सके।
1: जी और फिर प्रशिक्षण में उसे किस तरह की बातें उसको सिखाई जाती हैं।
0: प्रशिक्षण में सबसे पहले तो उसे पंप चालू करने से शुरू करते हैं कि
1: जी
0: आपको पंप चालू करना है। उसके लिए ग्राम पंचायत जो समय निर्धारित करता है,
1: जी
0: दिन में एक बार पानी देंगे, 2 बार पानी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे, जैसे
1: जी
0: भी उनकी व्यवस्था है,
1: जी
0: उसके अनुसार से पंप को चालू करना,
1: जी
0: अंतिम छोर में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है इसका परीक्षण करना,
1: जी
0: ग्राम में कहीं पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं है,
1: जी
0: वो लीकेज वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है।
1: जी
0: यदि कोई ऐसा मुख्य खराबी आ गई, मेजर बड़ी खराबी आ गई, तो तत्काल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जो हमारा PHE विभाग है, उसके जो फील्ड के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना या उन्हें दूरभाष पर सूचित करना,
1: जी
0: ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।
1: जी
0: इन्हीं सब चीजों का प्रशिक्षण देते हैं।
1: जी सर, अब हम आते हैं गुणवत्ता पर, जो पानी की गुणवत्ता है, पेयजल की गुणवत्ता, उस पर। क्योंकि हमारे प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की वजह से, जो भूजल है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, अक्सर खबरें भी मीडिया में आती रहती हैं। तो मतलब गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाती है कि जो पानी मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो? पानी की जांच या निगरानी की भी कोई व्यवस्था है क्या?
0: हमारे प्रदेश में
1: जी
0: छत्तीसगढ़ में एक राज्य स्तरीय जल प्रयोगशाला है,
1: जी
0: रायपुर में है।
1: जी
0: हमारे 33 जिलों में 33 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं।
1: जी
0: इसके अलावा हमारे सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल पर भी प्रयोगशालाएं हैं।
1: जी
0: हमने जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी पेयजल प्रदाय योजनाएं हम क्रियान्वित कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं,
1: जी
0: ऐसे सभी ग्रामों में हमने 5-5 जल बहिनियों का चयन किया है।
1: अच्छा
0: हमारे दो तरह से टेस्टिंग होती है, एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है
1: जी
0: और एक फील्ड टेस्ट होता है।
1: जी
0: फील्ड टेस्टिंग किट हमने हमारे सारे गांव को पहुंचा कर दिया हुआ है।
1: जी
0: ये जो 5 जल बहिनी है, हमने इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया हुआ है 3-3 दिन का,
1: जी
0: कि कैसे उनको पानी की जांच करना है। बहुत
1: जी
0: सिंपल रहता है, केमिकल डालते हैं, पानी लेते हैं और उसके बाद जो कलर आता है उसको एक कलर मैपिंग से नाप लेते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें इम्प्योरिटीज कितनी है।
1: जी कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है इस तरह से?
0: लगभग लगभग हमने 1 लाख से ऊपर महिलाओं को प्रशिक्षित कर
1: अच्छा
0: दिया
1: ये
0: है।
1: बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो भौगोलिक रूप से बड़ी विविधता वाला प्रदेश है, करीब 40% से अधिक वन क्षेत्र है, तो ये जो योजना है, ये जो मिशन है, जल जीवन मिशन, इसको लागू करने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ वामपंथी तत्व
1: पहले हुआ करते
0: पहले
1: थे, मतलब
0: हुआ
1: मार्च के
0: करते थे,
1: पहले तक। जी
0: तो समाप्त तो अभी हुआ।
1: जी बिल्कुल
0: ये योजना हमारी 5-6 साल पहले से लागू थी,
1: बिल्कुल
0: तो ये जो हमारा अप्रोच था ना,
1: जी
0: वो बहुत जगहों पर हम जा भी नहीं पाते थे, हम
1: जी
0: काम नहीं कर पाते थे।
1: जी
0: अब जब ये रास्ता बनना शुरू हुआ
1: नक्सलवाद का जब
0: और
1: समाप्त हुआ, अंत
0: नक्सलवाद
1: हुआ।
0: समाप्त हुआ,
1: जी
0: तो हमें ऐसी बहुत सी बसाहटें मिल रही हैं
1: जी
0: जहां पर हम पहले सोच भी नहीं पाते थे कि वहां बसाहटें होंगी या वहां पर लोग रहते होंगे।
1: जी
0: तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम इनको चिन्हांकित करके इनके लिए फिर से योजना बना रहे हैं
1: अच्छा
0: और वो योजना भारत सरकार

0: हमको सहमति दी है
1: जी,
0: कि वो ऐसी योजनाएं तत्काल बनाकर भेजें और वो उसकी राशि देंगे
1: जी। चंद्रवंशी जी ये बताइए कि बाकी जो बचा है उन तक पहुंचाने के लिए अब आगे की क्या प्राथमिकताएं हैं, किस तरह की योजना है, इसके बारे में बताएं।
0: जल जीवन मिशन के तहत हमने 74% कवरेज किया
1: जी जी,
0: मगर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का टोटल कवरेज 80 से ऊपर है,
1: 80% हो चुका है। तो अब जो बचा हुआ 20% है,
0: अब जो बचा हुआ 20% है
1: जी,
0: इसमें जो प्रमुख चुनौतियां थी, जेजेएम स्टार्ट होने के बाद इसका निर्धारित समयावधि मार्च 2024 था
1: जी,
0: किसी कारण से कार्य अपूर्ण रहे
1: जी,
0: उस कार्य को पूर्ण करने के लिए बाद में राज्य शासन से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ
1: जी,
0: योजना में
1: जी।
0: अब केंद्र सरकार ने मार्च में
1: जी
0: जेजेएम 2.0 लॉन्च किया।
1: अच्छा,
0: इसमें ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो हमारा स्वीकृत योजना है
1: जी,
0: उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की हुई है
1: जी,
0: जिसमें सिंगल विलेज की जो योजनाएं हैं SVS जो हैं, उसको तो उनका जो मैंडेट है वो मार्च 2027 तक पूर्ण करना है
1: जी,
0: जो मल्टी विलेज हैं जिसमें काम कम हुआ है, जिसमें काम आगे होना है, तो हम मार्च 28 तक ये जेजेएम के पूरे काम को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ काम पूरा करके हैंडओवर करना, प्लस हैंडओवर होने के बाद उसको कंटिन्यूअस रखना, वाटर सप्लाई ग्रामों में कंटिन्यूअस रहे, सुरक्षित जल मिले, साफ जल मिले
1: जी,
0: इसके लिए लोगों को ट्रेन करना, ये भी एक इसमें कार्यक्रम है
1: जी।
0: और भारत सरकार द्वारा बहुत सारे इसके मापदंड बनाए गए हैं
1: जी,
0: रिफॉर्म्स एक्टिविटीज हैं
1: जी,
0: ये सारे चीजों को वो समयबद्ध तरीके से स्टेट से कराते जा रहे हैं, हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: कुछ हमारे फील्ड में ऐसी समस्याएं हैं जहां पर ग्राउंड वाटर सोर्स नहीं है
1: जी,
0: जहां पर सरफेस सोर्स भी नहीं है
1: जी,
0: कि हम सरफेस स्कीम से ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम बना सकें
1: जी,
0: इन ग्रामों में पेयजल के लिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही है कि हम स्रोत कहां से लाएं
1: जी,
0: उस पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी योजना की समीक्षा की है
1: जी,
0: और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं इसमें कि ऐसी योजनाएं जिसमें स्रोत की कठिनाई हो
1: जी,
0: तो उसके लिए जिला प्रशासन तत्काल कार्यवाही करे।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: कार्यक्रम के अंत में ये बताइए ओंकेश चंद्रवंशी जी, आप अतिरिक्त मिशन संचालक हैं जल जीवन मिशन के, क्योंकि काफी दौरा भी किया होगा इस मिशन को क्रियान्वयन के संबंध में आपने, तो जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि इसमें जो महिलाएं हैं उनकी भी सुविधा, इसका एक उद्देश्य रहा है कि उनको सुविधा मिले, उनकी परेशानी दूर हो, हमारे जो ग्रामीण माताएं बहने हैं, कितना बदलाव आया है उनके जीवन में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद?
0: देखिए, ये बदलाव की जो गणना है या जो भी इस पर कार्य किया गया है
1: जी,
0: इसमें नीति आयोग ने इस पर काम किया है
1: जी,
0: और नीति आयोग के अनुसार इसमें महिलाओं के समय में बहुत बचत हो रही है, महिलाएं और किशोरी बालिकाएं
1: जी,
0: तो वो अपने इस बचत समय का अपने परिवार को समय दे रहे हैं, इससे उनके जीवन स्तर पर सुधार हो रहा है।
1: निश्चित रूप से, जैसे आपने कहा किशोरी बालिकाएं, तो पढ़ने की उम्र होती है,
0: पढ़ने की
1: तो हो सकता है कि अब उसमें वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रही हो, शिक्षा प्राप्त कर रही हो। बहुत अच्छा लगा चंद्रवंशी जी, आपने बड़े विस्तार से हमें जल जीवन मिशन को छत्तीसगढ़ में किस तरह से लागू किया जा रहा है और जो बचा हुआ 20% है उसमें किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके बारे में बताया। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम सम्पन्न होता है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: सेवा संकल्प अभियान के तहत अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जल जीवन मिशन। विशेषज्ञ थे जल जीवन मिशन के अतिरिक्त संचालक ओमकेश चंद्रवंशी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रादेशिक समाचार एकांश। ये आकाशवाणी
3: FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने सोनू निगम की आवाज में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

0: किसान वाणी सुनैया जम्मो संगवारी मन ला सरिता
1: औ पूजा के
0: राम राम। किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

पूजा भाई, बेरा बदलत हे और बेरा के संग खेती किसानी के तरीका घलो बदलत हे। पहली जमाना में भाई नांगर तुतारी

0: इधर के किसनहा हा बिहिनिया ले अरा तता करत पहुंच जाए खेत में और दिन भर पसीना बोहा के खेती किसानी के बूता ला सिर जावे। फिर बदलत बेरा में आज देखथन कि भाई बैला के जगह ट्रैक्टर हा ले ले है और थोकिन देर मा कतको एकड़ के जोताई हमन कर लेथन और हार्वेस्टर और थ्रेसर मशीन मन आ गए है तो भाई लुआई मिंजाई के जो बूता है वो आसान हो गए है।
1: बिल्कुल दीदी, भाई तकनीक के उपयोग ले हमर मेहनत और हमर बेरा दोनों के बचत होवत है और बेरा बचाए के एक ठीन और नवा उपकरण आगे दीदी जिला कहथन ड्रोन और ये ड्रोन तकनीक ला किसान तक पहुंचाए बर शासन द्वारा चालू करे गए है ड्रोन दीदी योजना।
0: हाँ पूजा महू हा सुने हो भाई ये तकनीक के बारे में। ऐसे है कि ये उपकरण जिन है एकर ले कई एकड़ खेत में दवाई पानी छिड़काव कुछ ही मिनट में हमन कर सकत हन और ये ड्रोन उपकरण हवा में उड़ते और खेत मन में जम्मो डहार बराबर दवाई के छिड़काव कर देते। बस ये ड्रोन ला चलाना आना चाहिए और एकर रख रखाव के जानकारी होना चाहिए।
1: हाँ दीदी, और ड्रोन दीदी योजना में यही तो सिखाया जाते। ये योजना के अंतर्गत महिला मन ला विशेष प्रशिक्षण दे के ड्रोन पायलट बनाए जाते। जब प्रशिक्षण पूरा हो जाते तब शासन द्वारा प्रशिक्षित महिला मन ला ड्रोन प्रदान करे जाते।
0: पूजा भाई ये ड्रोन तो अब्बड़ महंगा आवत हो ही ना।
1: हाँ दीदी, एक ठीन ड्रोन के कीमत लगभग 10 लाख रुपया तक होते जेमा 8 लाख रुपया के सहायता सरकार करते और 2 लाख रुपया बैंक द्वारा लोन के रूप में मिलते जेकर ब्याज दर बहुत कम रहते। ये रकम ले ड्रोन दीदी मल्ला अपन जेब ले 1 रुपया भी खर्चा करे की जरूरत नहीं पड़े।
0: अच्छा है, बढ़िया है भाई। फिर ये 2 लाख रुपया कहाँ पटा ही?
1: ड्रोन ले दवा के छिड़काव करके भाई 1 एकड़ पाछू 7 से 8 मिनट लगते। एक दिन में 4 से 5 एकड़ तक छिड़काव करे मा 1500 से 2000 तक के कमाई करके लोन के रकम ला धीरे धीरे पटाना है।
0: अरे वाह भाई। पूजा, खेती किसानी संग अतिरिक्त आमदनी कमाए के ये तो बढ़िया उद्यम है। एकर बर कोनो योग्यता के भी जरूरत होते का?
1: हाँ दीदी, पहला शर्त ये है कि महिला होना चाहिए और स्वयं सहायता समूह के सदस्य होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: उम्र 18 साल ले अधिक होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में 10वीं पास जरूरी है।
0: अच्छा, तब भाई ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलावा जाते संगवारी हो। 15,000 महिला मल्ला ड्रोन पायलट बनाए की योजना है। तब भाई आपो मन कहूँ ये योजना के लाभ लेना चाहत हो तो अपन ब्लॉक में जाके कृषि विभाग में संपर्क कर सकत।
1: ओ दीदी, अब सुन लेथन ये गीत जिला स्वर दे है लता खापड़े उखर साथी मन हा।

0: संगी अभी सुनत रहिन गीत जिला स्वर दे रहीन लता खाबड़े अंकुर साथी मन हा।
1: पूजा बेरा के महत्ता सबो जगह है और खेती किसानी मा बेरा ला देख के फसल लेबो तब आमदनी भी ज्यादा हो सकत है। वैसने है आज के सलाह मा संगवारी हो अक्टूबर माह मा फूल के खेती मौसम फसल प्रबंधन और बाजार के तैयारी ये विषय मा हम सुनबो जानकारी। विशेषज्ञ है डॉक्टर शिवानी क्षीरसागर पुष्प विज्ञान एवं भू दृश्य उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अर्जुंदा बालोदले और गोड बात करे है पूजा।
0: क्रम आज की सलामा आज के विषय है अक्टूबर माह में फूल की खेती मौसम फसल प्रबंधन और बाजार के तैयारी ये विषय में जानकारी दी है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी क्षीरसागर। आप मन शिक्षक हो पुष्प विज्ञान और भू दृश्य उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अर्जुंदा बालोद में। तो डॉक्टर मैडम सब तो राम राम स्वागत है अपन के हमारे कार्यक्रम में।
2: राम राम
0: मैडम। जैसे अभी हमर छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसान भाई मन खरीफ फसल में धान के फसल लगाए है और हमारे विशेषज्ञ मन कही थे कि धान के फसल के अलावा भी बहुत सारा फसल है दिगर व्यवसाय है तेला आपन करो ताकि आपन के अतिरिक्त आमदनी हो और माटी की गुणवत्ता सुधरे हमारे पर्यावरण के जो संतुलन है तेन बने रहे। तो यही में हम ये जानना चाहबो कि जैसे अभी अक्टूबर के माह अभी शुरू हुआ थे तो अक्टूबर के माह फूल की खेती पर काबर महत्वपूर्ण है।
2: अक्टूबर का जो महीना है फूल की खेती के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ का जो मौसम है धीरे धीरे बदलता रहता है। मानसून का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। तापमान में भी कमी आ जाती है। दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर बढ़ जाता है और इससे क्या होता है फूलों की जो फसल है वो वृद्धि और उसकी जो फ्लावरिंग है उसके लिए जो वातावरण जो है ना अनुकूल बन जाता है। और इसके साथ ही साथ जो अब हमको पता ही है कि त्योहार का सीजन आ रहा है। त्योहार के बाद तुरंत जब जैसे ही त्योहार खत्म होगा नवरात्रि दशहरा दिवाली उसके बाद सीधा आएगा शादी का सीजन। तो ऐसे ही सीजन्स में फ्लावर की मांग बढ़ी हुई रहती है और इसलिए अक्टूबर का महीना बहुत सही समय है फूल को उगाने के लिए और बाजार की मांग को देखते हुए ये बेस्ट है।
0: अब भाई जैसे हम छत्तीसगढ़ में कहान या हमारे पूरा भारत में कहान पूरा बच्छर भर कोई न कोई तीज त्योहार तो आते रहते तो फूल के मांग हर तीज त्योहार कहान हमला फूल के आवश्यकता तो पड़वे करती है। तो डॉक्टर मैडम अब यहू बताते हुए कर संगे संग कि अक्टूबर के माह में कौन कौन से फूल के व्यावसायिक खेती करे जा सकत है।
2: जैसे कि हर प्रकार का मौसम छत्तीसगढ़ में है हमारे यहाँ। आप अगर छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाके में जाएंगे तो वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है।

0: पिच प्लेन में जाएंगे तो सामान्य मौसम रहता है, तो उस प्रकार हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलों को ले सकते हैं। हम अभी रायपुर प्लेन्स की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से गेंदा, गुलदाउदी जिसे क्राइसेंथेमम भी कहते हैं और ग्लेडियोलस, ये तीन जो फ्लावर्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण समय है।
1: माने ये जो फूल आपन बताया हो गेंदा, गुलदाउदी और ग्लोडियोलस, तो यही ला हम अक्टूबर के माह में व्यावसायिक खेती पर चुनाव कर सकते
0: जी जी, कि इनके अलग अलग महत्वपूर्णता है तीनों फ्लावर्स में। जैसे गेंदा बहुत ही लोकप्रिय फूल है जिसका उपयोग माला, पूजा और डेकोरेशंस में किया जाता है और बहुत ज्यादा आजकल उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो गुलदाउदी है वो एज अ लूज फ्लावर भी आता है, खुला फूल के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है और बुके वगैरह में लगाने के लिए उसको हम कट फ्लावर बोलते हैं, उसके लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो ग्लेडियोलस है उसका उपयोग स्पाइक्स के रूप में करते हैं, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर अरेंजमेंट और बुके बनाने के लिए ही इसका मेन उपयोग किया जाता है। तो तीनों फसलों का अलग ही अलग उपयोग है।
1: माने अगर तीनों फसल एक साथ लगा देवन तो ये बहुत अच्छा हुई, लाभ के फसल हुई है मनहा। अब ये बताते मैडम कि इमा जैसे अपन गेंदा, गुलदाउदी और ग्लेडियोलस के गोट करत हो तो ये काबर ज्यादा चर्चा में है। यहाँ
0: जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि त्योहारों और धार्मिक आयोजन में मोस्टली गेंदा का उपयोग किया जाता है। इसकी मालाएं जो बनती है और डेकोरेशंस, आजकल जेंजी का दौर है और हर चीज सोशल मीडिया में दिखाने का चलन भी है, तो आप ये ध्यान दिए होंगे कि पहले से ज्यादा फ्लावर डेकोरेशन का जो दौर है वो बदल चुका है। पहले बहुत कम उपयोग होता था, लेकिन कम होता था, लेकिन अभी जो है ना उपयोग बढ़ गया है। साथ ही साथ फ्लावर अरेंजमेंट का जो यूज है वो भी बहुत हो रहा है, तो इसलिए ये फ्लावर अरेंजमेंट, बुके डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन के हिसाब से तीनों महत्वपूर्ण है।
1: अब गोट करन हमन जिसे गेंदा की, तो गेंदा के फसल के संबंध में अक्टूबर में किसान मन ला कौन कौन से बात की ध्यान रखिल पड़ती।
0: सबसे पहले किसान भाइयों को अगर गेंदा की खेती करनी है तो उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटेरियल, जैसे कटिंग थरहा हम जो बोलते हैं, वो स्वस्थ होना चाहिए। और सबसे पहली बात, आपके बाजार में मांग क्या है, किस प्रकार के गेंदे की मांग है, क्योंकि दो प्रकार का गेंदा होता है। एक अफ्रीकन गेंदा होता है जिससे हम मोस्टली हम फ्लावर शॉप में जो मिलता है, और एक लोकल गेंदा होता है, चंदेनी गेंदा हम जिसको बोलते हैं। तो जिस फ्लावर की मांग है उसी को उगाना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ उचित दूरी पर रोपाई, समय पर सिंचाई और संतुलित पोषक तत्व अगर किसान भाई समय समय पर देंगे तो उसकी फसल बहुत अच्छी होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ फसल का निरीक्षण करते रहना और कीट वगैरह का ध्यान देने से प्रोडक्शन जो उत्पाद है, उत्पाद का जो उपज है अच्छा हो।
1: अब ये तो बताया अपन गेंदा के फसल के बारे में, गुलदाउदी और ग्लोडियोलस ये गेंदा के फसल के खेती ले कैसे अलग है।
0: जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, तीनों फूलों की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है और मार्केट रिक्वायरमेंट है तीनों अलग अलग होती है। गेंदा को हम लूज फ्लावर के रूप में यूज करते हैं जिसमें फूलों की संख्या और नियमित रूप से तुड़ाई उसकी महत्वपूर्ण है। अगर हम नियमित रूप से तुड़ाई करते रहें जिससे उसकी शाखाएं भी बढ़ती है, इस बात का हम ध्यान देते हैं। और जो गुलदाउदी है उसके पौधे की फ्लावर क्वालिटी और वैरायटी, क्योंकि गुलदाउदी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत रंग के मिलते हैं, जैसे गेंदा पीला और नारंगी कलर का ही मिलता है, लेकिन गुलदाउदी सफेद, गुलाबी से लेके बहुत वैरायटी इसकी होती है। साथ ही साथ इसको हम गजरा बनाने, माला बनाने के लिए भी यूज करते हैं और बुके के लिए अलग कट गुलदाउदी का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस के लिए हमको ये ध्यान देना है कि जब हम उसका प्लांटिंग मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उसे कॉम कहते हैं, कांदा, एक प्रकार का कांदा होता है वो, तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का अगर होगा या फिर उसको हम उपचार करके लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा सही रहे।
1: माने आपन कहा था कि एक जो थर है या जो कांदा है वो स्वस्थ रही तो पौधा स्वस्थ मिली, और पौधा स्वस्थ मिली फूल स्वस्थ मिल भी करेगी। हाँ, ये तो बड़ सुखर जानकारी दियो मैडम आपन। हाँ, अब यहू बताते हो कि जैसे फूल के फसल हम लगाए हैं तो सिंचाई, पोषण यहू आवश्यकता पड़त हुई, तो एकर संबंध

0: आप मन का सुझाव देना चाहो?
1: जैसे कि अक्टूबर के माह में बारिश की संभावनाएं कम हो जाती है, तो जैसे जैसे बारिश की संभावना कम होती है वैसे ही सिंचाई की आवश्यकता बढ़ते जाती है। लेकिन किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि फ्लावर की फसल में कभी भी अधिक सिंचाई नहीं दे, पौधे की खराब होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ मिट्टी की नमी और फसल की अवस्था देख कर ही सिंचाई करनी चाहिए ताकि जल भराव से बच सके।
0: माने पानी ज्यादा हो ही तो फूल की फसल खराब हो जाएगी।
1: हाँ, और किसान भाइयों को फ्लावर की खेती के लिए ये मेरा सुझाव है कि स्टार्टिंग से ही शुरुआती रूप से अगर हम ड्रिप इरिगेशन का जो उपयोग करें, जिससे डायरेक्ट फसल के ना रूट जोन, जड़ का जो जगह होता है वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट जो वहां पे ज्यादा जाते,
0: तो उमेर आपन का तो ड्रिप इरिगेशन करे तो सीधा सीधा उकर जड़ में जत का पानी आवश्यकता है उतका जाही। और ड्रिप इरिगेशन भी तो यहू कर सकता था ना मैडम कि उमा दवाई पानी जो देना है वो भी दे सकता था।
1: बिल्कुल, उसको हम एक टर्म लेते हैं, उसका नाम है फर्टिगेशन। लेकिन फर्टिगेशन जब हम करते हैं ड्रिप इरिगेशन के साथ, जब हम फर्टिलाइजर या खाद उर्वरक का उपयोग करते हैं, उसमें हमें ये बात का ध्यान देना है कि पहले हम मिट्टी का परीक्षण कर लें। क्या है, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है और हम अगर नाइट्रोजन और अगर डालते जा रहे हैं तो ये पौधों के लिए नुकसान होगा। इसलिए पहले हम ये देख लें कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, उस हिसाब से हम अगर उर्वरक का उपयोग करें तो वो फसल के लिए ज्यादा सही है।
0: माने जांच करना पहले ज्यादा जरूरी है। अब इमें कीट और रोग घलो को लगत हो ही, भाई फूल हा वैसे भी नाजुक फसल है कहे जाए, तो इमें कीट और रोग ले बचाव पर हमन किसान मन का करें?
1: सबसे पहले तो उपाय ये है कि खेत का जो है नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हम अगर खेत में देख ही नहीं पाएंगे कि किस प्रकार का कीट या रोग का प्रभाव पड़ा है, तो उसमें सबसे पहले पौधे की पत्ती, नई पत्तियां, कलियां, फूल का साइज सही से आ रहा है कि नहीं, ये सब हमको ध्यान देना चाहिए। और अगर कभी असामान्य चीज दिखती है तो उसके उपाय को ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो स्वस्थ प्लांटिंग मटेरियल का उपयोग करना चाहिए, रोग ग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसान भाई जब कीट या रोग उनको दिखाई देता है तो तुरंत किसी भी पेस्टिसाइड या कीटनाशक या रोगनाशक का उपयोग नहीं करना है। पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हम पत्ती की तुड़ाई करके उस रोग को वहां से हटा सकते हैं ताकि वो दूसरे पत्तियों में ना फैले, तो बिना कीटनाशक के भी उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। और एक बार जैसे हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर दिए हैं तो एक नियमित समय को हमें उसको देना पड़ेगा प्लांट को, नहीं तो हम अगर मान लीजिए आज हम पेस्टिसाइड का उपयोग करें हैं और 3 दिन बाद अगर वो कुछ नहीं हो रहा है तो किसान भाई सोचते हैं कुछ लोग कि ये नहीं हो रहा है तो डबल स्प्रे कर देते हैं, जिससे पौधे को हानि पहुंचती है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए, उसको पेस्टिसाइड के प्रभाव आने के लिए उसको समय देना चाहिए।
0: माने थोड़ा रुक के देख लेवन का प्रभाव हुआ थे, कतका दिन में हुआ थे, थोड़ा देख लेवन, ओकर बाद दूसरा हम कदम उठावन, ऐसे आपके कहे मतलब है। अब एकर संगे संगे यू बताते हो फूल की तुड़ाई विशेष समय में करे जाते, एकर बारे में हमारे किसान भाई मन आप मन का जानकारी देना चाहू?
1: जैसे कि हम 3 फसल के बारे में बात कर रहे हैं, गेंदा, ग्लैडियोलस और गुलदाउदी, तीनों की जो तुड़ाई का समय है वो अलग अलग होगा। जैसे गेंदा एक लूज फ्लावर है तो वो जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, उसके जितनी भी पत्तियां हैं वो अच्छे से खिल जाएगी, तभी उसका हम तुड़ाई करेंगे और उसकी नियमित रूप से तुड़ाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। वहीं ग्लैडियोलस जो है वो एक कट फ्लावर है, तो ये एक स्पाइक होता है, एक स्पाइक में नीचे से इसकी कलियां खिलती है, तो जब नीचे से कलियां खिलना स्टार्ट होती है ना तब इसकी तुड़ाई करना चाहिए। और इसके जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको वर्टिकल रखें, खड़ा रखें, ताकि ये झुके ना, बेंड ना हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए तुड़ाई के बाद।
0: तो ये तो बड़ा अच्छा जानकारी रही कि तुड़ाई कैसे करना है और एक रख रखाव कैसे करना है, है ना? अब यही बताते हो कि का फूल की खेती ला पारंपरिक फसल के साथ में करे जा सकते है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसको पारंपरिक खेती का विकल्प समझना कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि किसान के खेत की मिट्टी, उसका श्रम, निवेश और बाजार की स्थिति इस चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है।
0: अब मैडम यही बताते हो कि अगर कोई छोटे किसान है पहली बार फूल की खेती करना चाहते

0: एकदम शुरुआत में आपन का जरूरी गोट के ध्यान रखे के सलाह दू।
1: सबसे पहले तो आपके स्थानीय मौसम और बाजार की मांग, ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप फूल का चुनाव करें, ये सबसे पहली बात है। और साथ ही साथ दूसरी बात, प्लांटिंग मटेरियल जो हम पौधा ले रहे हैं वो रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका पूरी प्रबंधन, हम जो फसल उगाने से लेके तुड़ाई तक उसका नियमित रूप से प्रबंधन बहुत जरूरी है। और सबसे मेन बात तो बाजार की मांग ही है। बाजार को जब हम सोचकर काम करेंगे तभी, और साथ ही साथ किसान भाई को ये ध्यान देना जरूरी है कि आपने फसल उगा तो ली, फूल उगा लिया, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ?
0: ये सबसे बड़ी समस्या
1: सबसे बड़ी
0: आती
1: समस्या फ्लावर के लिए यही आती है, फूल की खेती के लिए, कि फ्लावर को बेचना कहाँ है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक तो आप फ्लोरिस्ट के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं,
0: माने फूलों के दुकान
1: जो
0: वाले
1: दुकान वाले हैं,
0: बेचते। हाँ
1: होलसेलर है, वेंडर्स हैं। साथ ही साथ आजकल मंदिरों में फ्लावर्स का जो डेकोरेशन है बहुत चलन में है, तो आप अगर डायरेक्ट मंदिर ट्रस्ट से बात कर लें तो वो भी आपके लिए फायदा करेगा, क्योंकि वो वेंडर से लेंगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट उनको बेच दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है बाजार की जानकारी।
0: अंत में जात जात आपन किसान भाई मन ला औ का संदेश देना चाहो।
1: सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि फूलों की खेती में सफलता केवल अच्छे फूल उगाने से ही नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही फूल और सही समय पर बाजार में पहुंचने से ही आपको लाभ प्राप्त हो।
0: डॉक्टर मैडम, आप मन हाँ बड़ सुघर जानकारी दे हो कि फूल के खेती हम पारंपरिक फसल के साथ घलो कर सकत हन। हमन बाजार मांग ला देखत हुए कैसे हम फूल की खेती ला करन, अपन जो उत्पाद है ओला कहाँ बेचन कैसे करन, ता ये सबो जानकारी ला बड़ फरिया के आपन हाँ बताओ। ये जानकारी खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: अभी सुनेन भेंट वार्ता जेमा आज की विषय रही से अक्टूबर माह मा फूल के खेती, मौसम, फसल प्रबंधन और बाजार के तैयारी। ये विषय में जानकारी देवत रहीन डॉक्टर शिवानी क्षीरसागर, शिक्षक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अर्जुंदा बालोदले। संगवारी हो, अब एक ठन सूचना है। अवैया शुक्रवार माने 2 अक्टूबर 2026 के प्रसारित होने वाला हेलो चौपाल कार्यक्रम में विषय हो ही धान में गभोट अवस्था में उर्वरक प्रबंधन। आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश पांडे जी, आप मन कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर ले हो। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए पर हमारा फोन कर सकत हो। हमारे फोन नंबर है 4003482, दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के स्टूडियो कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 के भेनिया बेरा 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। और ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा बेरा 7:30 में करे जाही। हमला आपन के फोन कॉल के अगोरा रही, सूचना यही में समाप्त हुआ थी।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
1: पूजा हमर संगवारी मन अगोरा करत होई भई, बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, त ओ मन ला बता देथन हमर आज के प्रश्न। संगवारी हो लिख लेवा, हमर आज के प्रश्न है, फूल के खेती मा सिंचाई बर कौन से तकनीक लाभदायक होते। एक घाव सुन लेवा, फूल के खेती मा सिंचाई बर कौन से तकनीक लाभदायक होते। और अब बता देथन पाछू हफ्ता मा पूछे गए सवाल ओकर सही जवाब। पाछू हफ्ता के प्रश्न रही से संगवारी हो, एक हेक्टेयर तालाब बर कतका लोन के प्रावधान है। और एक सही जवाब है 1,60,000 रुपया तक। और सही जवाब लिख के हमर संगवारी मन पठो है, महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति रेयांश ठाकुर मन दहीहान बांधा बाजार राजनांदगांव ले है। हरिओम साहू, रेवा राम, रानू सरस्वती, प्यारी राम साहू, परमानंद साहू मन तेंदु भाटा मगर लोड धमतरी ले हैं। उमेंद कुमार निषाद, मोहेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन निषाद मन डुमर टोला मंगचुआ बालोद ले हैं। भगवानी राम कार्टे, गोपिका, भावेश, माधुरी देवी कार्टे मन बठेना पाटन ले हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, मुरली, नीरा, निधि, निखिल, यश प्रयाण और शिवम वर्मा मन मदनपुर कवर्धा ले। श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू मन
3: सही जवाब भेजैया। हमर जम्मो संगी मल्ला बहुत बहुत बधाई। और आज के प्रश्न के उत्तर भी आपन झटकुन हमर तीर पठो दो, ताकि अवैया गुरुवार हम आपन के नाम ला शामिल कर पावन। ये रही से किसान वाणी, जेकर प्रायोजक रहीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो गए जाए के बेरा, तो जाए के पहली बता देवन काली के कार्यक्रम। काली चौपाल में आज के बाद संग श्रोता संगवारी मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान हो ही हेलो चौपाल में। आज के प्रश्न संग गीत संगीत के ममहासी तो बगर बेच कर ही, त देवो विदा जम्मो संगवारी मल्ला सरिता
3: और पूजा के
1: राम राम, राम।

0: चौपाल किसान साथियों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुने आबिदा की आवाज में आमिर खुसरो का लिखा ये गीत।

0: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ?

इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: परदेस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: खेल जगत की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
5: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
7: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
9: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
10: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
9: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
11: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है।

0: हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामी, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबउ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है लव मैरिज।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ। सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंका। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आज और कल।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सेग।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। जब तुम्हें मैंने पहली दफा देखा था, मुस्कान ने तुम्हारी मेरे दिल को जीता था। जाने तुम्हारी काली आंखों का जादू था या गोरे गालों की हंसी, जाने अनजाने ही सही मैं तुम्हारे प्यार के

0: परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त।
1: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश कार्यक्रम विविध संगीत।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: विविध संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने फारूक कैसर का लिखा गीत, आवाज है यशोदास की।

अभी आप सुन रहे थे इंद्रजीत हसनपुरी की रचना, आवाज थी जगजीत सिंह की। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए किशोर कुमार का गाया गीत। गीतकार हैं प्रकाश मेहरा।

इस गीत के साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के कार्यक्रम के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे खत आए हैं और लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का ये पहला खत। ये है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, रॉबर्टसन दर्रामोड़ा से लंबोदर प्रसाद पटेल, फैलेंद्र कुमार, तुलाराम, तरुण कुमार, रामा आर्यन, आयान, सुरेंद्र कुमार, पीयूष, हेमंत कुमार, रूप बसंत, मानस, हरिशंकर, देवा पटेल और सीताराम निषाद, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से हैं गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से पूजा बबीता, शोभा रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, नारायण भाव खर्चे। आप सभी साथी सुनना चाहते हैं दो चोर फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: अगले गीत के पसंद करने वाले हमारे साथी हैं, गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा और अंशु गुप्ता, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, धरसीवा से छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, नयनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य, कुमारी सानवी, महिमा और परिवार के सभी सदस्य, आप सभी हैं कटघोरा चिरमिरी रोड कोरबा से। आप सभी साथी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी का गाया गीत, फिल्म है आए दिन बहार के, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: से

कार्यक्रम का अगला गीत है गुलजार का लिखा हुआ, फिल्म दर्द के लिए आवाज है किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहते हैं रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अगले गीत के फरमाइशकर्ता साथी हैं श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहाबा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव शाइना और निवान शर्मा, चकरभाटा कैंप से रूपचंद सिंहवानी, सपना गोविंदा, जयंत कृपाल, साधना शेरू, कंचन और मीना सिंहवानी, केवटापारा से हैं मालती निषाद, पार्वती निषाद, अनमोल निषाद और मीनू निषाद। आप सभी साथी सुनना चाहते हैं फिल्म मोम की गुड़िया का गीत, आवाज है लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म हम साया से। इस गीत को पसंद करते हैं हमारे साथी छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह। ग्राम दरचुरा से ददवा साहू, भोरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू और अरसलान बाबू।

आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 2400 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।